FM बैंड 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 30 जून 2026। इस समय सुबह के 5:56:32 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं आरंभ में सुनिए समूह स्वर में मातृवंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। विषय है सकारात्मक सोच। चिंतक डॉक्टर सुरेश सम्राट।
1: सकारात्मक सोच सदैव रचनात्मक दिशा का अनुगामी होता है। ऐसा सोच रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति में अच्छे कार्यों के प्रति सम्मान और प्रसन्नता का भाव रहता है। स्वार्थ और दूसरों के अहित की बात तो उसे स्पर्श तक नहीं कर पाती। अनुचित समझौतों से वह दूर ही रह

0: रहता है। किसी की समृद्धि, सफलता या विजय उसे उल्लसित ही करती है। जलन, ईर्ष्या जैसी बुराइयाँ उसमें किसी दूसरे के उत्कर्ष को देखकर नहीं उपजती, वरन वह उसे भी सद्भाव और प्रसन्नता के साथ ग्रहण करता है। सच कहा जाए तो सकारात्मक सोच मानवीय दृष्टिकोण के सबसे पावन स्वरूप का जनक होता है। सकारात्मक सोच और चिंतन वाला मनुष्य कर्मयोगी तो होता ही है। वह अपने अमूल्य समय, अपने महत्वपूर्ण प्रयत्न और अपनी सामर्थ्य का उपयोग दूसरों के हित के लिए करने में कोई संकोच नहीं करता। किसी की उचित अपेक्षा से उसे कष्ट का नहीं, आनंद का अनुभव होता है। दूसरों के कष्टों और समस्याओं को समझने, उन्हें सुलझाने में उसे खुशी मिलती है। उनके सुख दुख का भागीदार बनना, हताशा में उन्हें प्रोत्साहित करना और विपरीत परिस्थितियों में उन्हें धैर्य का संबल प्रदान करना वह अपना निस्वार्थ दायित्व समझता है। दूसरे की नाकामयाबी पर वह हंसता नहीं, असफल को वह हीन नहीं समझता, बल्कि और गहराई से समझने की कोशिश करके वह उसे वास्तविकता से साक्षात्कार कराने के लिए तत्पर रहता है। कोई भी मनुष्य जिसकी सोच सकारात्मक होती है स्वयं अपने को महान या बड़ा समझने का भ्रम कभी नहीं पालता। अहम का अहंकार कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरा ही विचार सही है, इस प्रकार के भ्रम और दुराग्रह उसके मन में कभी नहीं आते। अपनी भूल को स्वीकार करने में उसे संकोच नहीं होता। यदि उसका मत या विचार सही निकलता है तो वह इसके लिए न तो स्वयं की तारीफ करता है और न ही तारीफ सुनने की अपेक्षा रखता है। व्यवहारिक जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने के लिए कोई विशेष प्रयास करने पड़ते होंगे, ऐसी बात नहीं है। यह सब तो स्वस्थ चित्त और चिंतन स्वतः ही यंत्र की भांति संचालित करता रहता है। उसमें स्वार्थी होने या श्रेष्ठता की ग्रंथि पनपने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसमें संवेदना और दया भाव जैसे गुणों का आ जाना एक स्वाभाविक क्रिया के रूप में ही संभव हो जाता है। दूसरे के दुर्व्यवहार के जवाब में भी भलाई का व्यवहार करने की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। वह असहमति से क्रोधित नहीं होता, बल्कि उस पर विचार करना ही ज़्यादा पसंद करता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को लोकप्रियता अपने आप ही मिल जाती है, क्योंकि सामाजिक होकर जीना उसे अच्छा लगता है। लोगों से मिलने वाले अपनत्व के कारण उसका आत्मसंतोष और बढ़ जाता है। अधिक से अधिक लोगों से मिलने, उन्हें समझने और अपनी सेवाएं देने में वह सोच विचार नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्म प्रवंचना जैसी सर्वव्यापी बुराई से भी दूर रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सकारात्मक सोच व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यदि हम अपने सकारात्मक सोच पर दृढ़ता के साथ अडिग रहेंगे तो कुंठा और असंतोष जैसी प्रवृत्तियां हमें छू तक नहीं पाएंगी। वस्तुतः सकारात्मक सोच स्वयं के जीवन को तो स्फूर्त बनाए ही रखता है, दूसरों के जीवन को भी सहज सरस बनाने की प्रेरणा देता रहता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आज का विषय था सकारात्मक सोच। चिंतक थे डॉक्टर सुरेश सम्राट। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मा अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में गायन स्वर थे शोभा जोशी के। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कृषि सामिकी। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक सिंह यादव। आज का विषय है खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व बीज उपचार जरूरी क्यों।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे वर्तमान जो मौसम है उसके हिसाब से खरीफ की जो फसलों की बोनी के लिए पर्याप्त नमी हमारे यहाँ हो चुकी है, और जैसे ही बोनी का समय आता है हमारी जो खेतों में बोनी की अनुकूल स्थिति बनती है, तो हमारे किसान भाई जो विभिन्न प्रकार की जो हमारे जो अंचल में जो फसलें लगाई जाती हैं उनकी बोनी के लिए की तैयारी करेंगे। तो उससे पूर्व मैं किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूँ कि वो बोनी से पहले फसलों में टीकाकरण जरूर करें। टीकाकरण का से मतलब मेरा जो है बीज का उपचार करने से है। जिस प्रकार जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हमारे यहाँ

0: करते हैं तो ये समस्याएं हमारी फसलों में नहीं आती हैं, हमारी फसल का अंकुरण अच्छा होता है तथा जो नुकसान होता है इन समस्याओं से उस नुकसान को हम पहले से रोक सकते हैं। तो बीज उपचार के लिए मैं किसान भाइयों यहाँ ये कहना चाहूंगा, अगर हम फसलों में बीज को बोने से पहले उसको उपचारित कर लें या उसका टीकाकरण कर लें तो ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके लिए हम तीन चीजों का उपयोग में लाते हैं, जैसे जो फफूंदी जनित जो बीमारियां होती हैं या जो रोग आते हैं उनके नियंत्रण के लिए हम जो है फफूंदी नाशक दवा से बीज उपचार करते हैं। इन फफूंदी नाशक दवाओं में आप सभी लोग इनसे परिचित हैं, जैसे कार्बेंडाजिम है, कार्बोक्सिन है, बीटावैक्स पावर है और साथ ही साथ कुछ जैविक फफूंदी नाशी भी आते हैं जैसे आपका ट्राइकोडर्मा वेडी है, इनका उपयोग हम जो है बीज उपचार में कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम और थायरम, ये हम 2 ग्राम आपका जो है थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम, इसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम अगर ले लेते हैं तो इससे हम बीज उपचार कर सकते हैं। अगर थायरम हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम जो है 3 ग्राम कार्बेंडाजिम का उपयोग जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से कर सकते हैं। कार्बोक्सिन का अगर हमें उपयोग करना है तो 2 ग्राम कार्बोक्सिन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर हम उपयोग करते हैं तो जो कई बहुत सारी जो समस्याएं जो फसलों में आती हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोग हमें देखने को मिलते हैं, इनसे हम जो है अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो बीज उपचार बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हम जो है कई ऐसी समस्याएं होती हैं विभिन्न फसलों में जो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कुछ कीट जनित समस्याएं होती हैं। जैसे इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे हमारे यहाँ जो है सोयाबीन की फसल लगाई जाती है, मूंग और उड़द की फसल लगाई जाती है, तो इसमें पीला मोजैक रोग आता है। ये जो रोग होता है ये कीट जनित समस्या है, क्योंकि सफेद मक्खी ये कीट होता है जो इस रोग को फैलाने का में बाहक का कार्य करता है। तो इस ये जो रोग है हमारी फसल में ना आए इसके लिए जरूरी है कि हम अगर कीट नाशी दवा से भी अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं तो ये रोग जो है हमारी फसलों में नहीं आता है। इसके लिए थायमेथग्जम 70 WS के नाम से कीटनाशक आता है, जिसको 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर हम जो है सोयाबीन, मूंग और उड़द में अगर बीज उपचार कर लें तो ये पीला मोजैक रोग जो फसल में जो आता है इसकी संभावना को हम जो है कम कर सकते हैं, इस रोग को हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार हम जो उर्वरक का हम जैसे उपयोग करते हैं, हम विभिन्न फसलों में अलग अलग उर्वरक डालते हैं, तो इस उर्वरक की हम उपलब्धता को हम कैसे बढ़ाएं, उर्वरक की जो है मात्रा को कैसे कम करें जिससे कि हमारी लागत में कमी आए, उसके लिए भी हम जो है अगर जो है जो कल्चर जो हमारे आते हैं जैविक जो कल्चर होते हैं अगर उनका उपयोग हम बीज उपचार में कर लें तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो राइजोबियम कल्चर आता है जो हम दलहनी फसलों में जिसको लगा सकते हैं, जो 10 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपयोग में लाते हैं। जो हमारी अदलहनी फसलें हैं उनमें हम जो राइजोबियम की जगह एजोटोबैक्टर कल्चर का उपयोग करते हैं, और इसी प्रकार हम जो है PSB कल्चर आता है जिसको हम फास्फोरस घुलित बैक्टीरिया बोलते हैं, इसका भी उपयोग अगर हम बीज उपचार में करते हैं तो मिट्टी में जो पड़ा हुआ जो हमारा स्पोर है, जो हम विभिन्न प्रकार के उर्वरक हैं जैसे आपका DAP है या जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसके माध्यम से जो हम मिट्टी में डालते रहते हैं विभिन्न फसलों में, तो ये जो उसमें जो फॉस्फोरस जो तत्व होता है जो एक ऐसा तत्व है जो चलायमान नहीं है, जो पौधे की जड़ अगर इसके पास नहीं पहुंच रही है तो वहां से वो मिट्टी के साथ जो चिपक कर वहां फिक्स हो जाता है। तो अगर हम जो है PSB कल्चर से बीज उपचार कर लेते हैं तो उसमें कुछ एंजाइमिक एक्टिविटी होती है उससे, और वो जो फास्फोरस में पड़ा हुआ है उसको जो है वापस जो है घोलकर पौधे को उपलब्ध कराता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामग्री, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक सिंह यादव। आज का विषय था खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व बीजोपचार जरूरी क्यों। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। आपको दे रहे हैं जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में 7:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता। लघु वार्ता में आज का विषय होगा वसुंधरा पर्यावरण संदर्भित। सुबह 7:20 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 7:45 पर आपको सुनवाएंगे प्रातःकालीन दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सुबह 9 बजे से आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत गायक कलाकार आभा खरे और दामोदर शर्मा की आवाज में मनमोहक लोकगीत। 9:30 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसका अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से होगा। सुबह 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम

क्रम सुगम संगीत में खुशबू भार्गव के स्वर में भजन 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सुबह 11 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। संध्या 5 बजे सुनिएगा युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल में चर्चा करेंगे पानी की बचत, जल संवर्धन जरूरी है और स्वच्छ शौचालयों का करें प्रयोग विषयों पर। 7:30 पर आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और पशुओं को टीकाकरण क्यों और कैसे विषयों पर। साथ ही किसानवाणी गांव में किसान के साथ स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ग्राम वसंतपुरा विकासखंड बदरवास जिला शिवपुरी की स्थल रिकॉर्डिंग। असाइनी और प्रस्तुति सहयोग श्री मोहन सिंह यादव का और प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री विनोद त्रिपाठी। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती प्रसारण। 10:45 पर रात्रि में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। श्रोताओ, ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित पहले संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,2000 द्वितीयरक्षा अलङ्करणसमारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्यपुरस्काराः रक्षासैन्यबलानां केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षकबलानां केन्द्रशासित आरक्षकाणां कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्रबलानां केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां अन्यसुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणाम् असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवापदकानि, 30 परम विशिष्ट सेवापदकानि, 12 उत्तम युद्ध सेवापदकानि, 50 अतिविशिष्ट सेवापदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः, सशस्त्रसेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 दिनांके राष्ट्रपतिभवने रक्षा अलङ्करणसमारोहे प्रथमचरणस्य शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स् देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स् देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स् देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50तमे वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स् देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स् देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रियनिवेशावसंरचनाकोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटिरूप्यकाणि अभवत्। एतदुपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु राष्ट्रियमहत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेशप्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूतसंरचनानिवेशस्य गतिं वर्धयितुं, देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटिरूप्यकाणाम् अतिरिक्तनिवेशप्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीयकृषिकृषककल्याणमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य 2-दिवसीययात्रायां भविष्यति। श्रीचौहानः असमराज्यस्य गुवाहाटीनगरे उच्चस्तरीयसमीक्षासभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायाम् असमराज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्णजलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमानसहायोद्धारकार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असमराज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्रीचौहानः श्वः अरुणाचलप्रदेशस्य जलप्लावितक्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धारशिबिराणां च स्थित्याः मूल्याङ्कनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीयदिनाङ्कादारभ्यमाणस्य 57-दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथयात्रायाः प्राक् सुरक्षासंस्थाः पञ्जाबतः जम्मूकश्मीरपर्यन्तं तीर्थयात्रामार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक् ड्रिल् इति आचरन्ति, निरीक्षणप्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षितगमनागमनं सुनिश्चेतुम् अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लघु वार्ता। श्रोताओं, लघु वार्ता में आज का विषय है वसुंधरा पर्यावरण संदर्भित। सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पौधों और प्राणियों के विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध है, इसीलिए इसे वसुंधरा कहा गया है। पृथ्वी पर व्याप्त पर्यावरण प्रकृति का श्रेष्ठ वरदान है। भारत में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदिकाल से ही रही है। यही कारण है कि यहाँ पृथ्वी या धरातल को माँ, पेड़ों को देवता और जीवों को ईश्वर का अंश एवं जल, वायु और मौसम को भी देवता माना गया है। अपने हजार वर्ष के सभ्यता काल में पर्यावरण की कोई विकट समस्या हमें नहीं झेलनी पड़ी, जो विगत कुछ सौ वर्षों की तीव्र प्रगति काल के दौरान झेलनी पड़ रही है। आज भी गांव का एक व्यक्ति पेड़ के प्रति संवेदनशील है, जबकि शहरी आदमी यह संवेदना खो रहा है और कंक्रीट के घने जंगल बनाता जा रहा है। आधुनिक नगर निर्माण के लिए वनस्पतियों का सफाया आज आवश्यक समझा जा रहा है, जबकि प्राचीन भारत के वास्तुकार वाटिका नगर की मान्यता पर नगर निर्माण कर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करते रहे थे। आज का युग विज्ञान और तकनीक के विकास का युग है। इस तकनीक ने आर्थिक सामाजिक प्रगति को नया आयाम दिया है। कृषि, पशुपालन, उत्खनन, परिवहन, उद्योग और सामरिक महत्व के संसाधनों के लिए उच्च तकनीक आवश्यक है। तकनीकी विकास के बल पर आज मानव विकास की जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, उसकी कल्पना तक कुछ वर्ष पहले नहीं की जा सकती थी। लेकिन विज्ञान और तकनीकी विकास का यह युग भयावह दृश्य भी उपस्थित कर रहा है। अधिक ऊर्जा उपभोग से पर्यावरण अवक्रमण जैव जगत के लिए संकट बनता जा रहा है। आज परिवहन, उद्योग धंधों के विकास आदि के कारण ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं जनजीवन को संकट में बना रही हैं। आज पर्यावरण से उत्पन्न खतरे इतने भयावह होते जा रहे हैं कि विश्व समुदाय इससे चिंतित हो उठा है और पर्यावरण संतुलन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उपाय किए जा रहे हैं। आज पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, दरअसल वे मानव जनित ही तो हैं। अतः आवश्यक है कि पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के उपाय किए जाएं। हर व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए और संकल्प कर ले कि कम से कम ऊर्जा खपत करेगा, पर्यावरण को सुंदर और संतुलित बनाने में अपना योगदान देगा, तो इस खतरे को कुछ तो कम किया ही जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता। श्रोताओं, लघु वार्ता में आज का विषय था वसुंधरा पर्यावरण संदर्भित। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिनका अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा की

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा

0: ने कल नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल है और इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: Applications launch is going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू भी हुआ। इसके तहत आगामी 3 वर्षों में पीएम केयर्स के माध्यम से प्रदेश को 13 एमआरआई मशीनें, 11 मेमोग्राफी मशीनें तथा 308 एआई सक्षम हैंडहेल्ड एक्सरे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य एवं निदान सेवाओं को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ उनके संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इस अभियान के संचालन में राजगढ़ जिले को भोपाल संभाग में प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर के अंतर्गत भैंसवा माताजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद रोडमल नागर भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि जलगंगा संवर्धन अभियान की इस अल्पावधि में ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम चक विश्वनगर स्थित भौरा में लगभग 278 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र के लगभग 225 गांवों के 2.5 लाख से अधिक परिवारजनों को सुदृढ़, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सशक्त, समृद्ध एवं विकसित गुना के निर्माण हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं।
3: जिस बमोरी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस बमोरी में आज 220 केवी का सबस्टेशन मुंड्रा हनुमान में स्थापित हो रहा है 280 करोड़। मैं देश का ऊर्जा मंत्री रहा हूँ, उस जमाने में 200 केवी का सबस्टेशन मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलुरु यहाँ लगते थे। मोदी जी के जमाने में 220 केवी का सबस्टेशन मुंड्रा हनुमान में लग रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे जिसमें खेती से जुड़े मॉडल और आधुनिक कृषि के तरीकों, मृदा प्रबंधन, फसल सुरक्षा, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहल प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल क्षति, गांवों और बुनियादी ढांचों की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए 12 जून से ये अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके तहत एक ग्राहक या एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली में नोटरी नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नया आवेदन

मॉड्यूल लॉन्च किया। ये मॉड्यूल योग्य कानूनी पेशेवरों और अधिवक्ताओं को नोटरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम बनाता है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि विधिक मामलों का विभाग नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर इस मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के मुंबई स्थित कौंसुल जनरल नबील ताउआती ने आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में मुलाकात की। इस अवसर पर कौंसुलेट जनरल के साथ मुंबई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार कौस्तुभ परिहार तथा कृषि सलाहकार प्रसाद पारते भी उपस्थित रहे। भेंट के दौरान पुलिस महानिदेशक ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग तकनीकी नवाचार एवं नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार तथा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के मोतीसागर तालाब पर होमगार्ड जवानों का विशेष तैराकी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आगामी 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इंदौर जिले के छोटी बेटमा स्थित विशिष्ट आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर में पीटीआई के रिक्त पदों के लिए 6 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आज डिंडौरी जिले के प्रवास पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे समनापुर और कुटेला क्षेत्र के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दिया गया है। झाबुआ में युवा संगम का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में किया जाएगा। बैतूल में हॉकी प्रतिभा खोज चयन ट्रायल में जिले के युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। और कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्वाचन सदन स्थित ईवीएम वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का त्रैमासिक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इको सिस्टम में शामिल, कहा स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ में दीवा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक सूचना परक कार्यक्रम। नमस्कार।

प्रातःकालीन दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में सभी श्रोताओं का अभिनंदन। महात्मा गांधी ने कहा है, एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में रहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री सिंधिया के दौरे की तैयारियां तेज, कलेक्टर ने लिया जायजा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रस्तावित शिवपुरी दौरे को लेकर जिला

ग्राउंड और गांधी पार्क पहुंचकर वहां की भौतिक स्थिति, सुरक्षा मानकों और आमजन के लिए उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से संभावित कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर अर्पित वर्मा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने तकनीकी व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों और वीआईपी आगमन की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम के हर पहलू पर प्रशासनिक स्तर पर विचार विमर्श किया गया, ताकि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के संभावित दौरे को सुव्यवस्थित और सफल बनाया जा सके।

3 महीने बंद रहेगा माधव टाइगर रिजर्व। बारिश के मौसम शुरू होते ही माधव टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की एंट्री पर ब्रेक लग जाएगा। पार्क प्रबंधन ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीनों के लिए टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। पार्क प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि मानसून के दौरान पूरे देश के ज़्यादातर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क बंद कर दिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण बारिश में जंगल के अंदरूनी कच्चे रास्तों का खराब होना है। ऐसे में पर्यटकों के वाहनों के फंसने व हादसे का खतरा बना रहता है। इसके अलावा बारिश का मौसम वन्य जीवों के प्रजनन का भी समय होता है। इस दौरान बाघ, तेंदुआ, हिरण समेत कई जानवरों के बच्चे जंगल में होते हैं। इंसानों की आवाजाही से उन्हें परेशानी होती है और उनकी सुरक्षा को भी खतरा रहता है। इसलिए वन्य जीव संरक्षण और पर्यटकों की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए हर साल बारिश के मौसम में पार्क बंद कर दिए जाते हैं। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां हर साल हजारों पर्यटक बाघ, तेंदुआ, सांभर व अन्य जंगली जीवों को देखने के लिए आते हैं। पार्क प्रबंधन का कहना है कि अब 1 अक्टूबर से नया पर्यटन सीजन शुरू होगा। तब तक वन विभाग रास्तों की मरम्मत और सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त करेगा। सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पर भी पर्यटकों की एंट्री 2 माह के लिए बंद। मानसून के दौरान संभावित हादसों की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पर आमजन के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से 2 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। SDM आनंद सिंह राजावत ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का उद्देश्य वर्षा काल में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित जनहानि को रोकना बताया गया है। प्रशासन के अनुसार मानसून के दौरान सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तेज जल प्रवाह, फिसलन और जल स्तर बढ़ने जैसी परिस्थितियों में दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। प्रभारी तहसीलदार सुभाषपुरा एवं थाना प्रभारी सुभाषपुरा की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। हालांकि यह प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं हो।

140 गौशालाओं में 19,839 मवेशी दर्ज, फिर भी सड़कों पर घूम रहा वे सहारा गौवंश। जिले की 140 सत्यापित गौशालाओं में कुल 19,839 गौवंश दर्ज हैं। इन गौशालाओं के संरक्षण संचालन के लिए मध्य प्रदेश सरकार 40 रुपये प्रति मवेशी प्रतिदिन के मान से अनुदान देती है। इस हिसाब से इन गौशालाओं के लिए प्रतिदिन 7,93,560 रुपये एवं सालाना 28,94,00,000 रुपये का अनुदान निर्धारित होता है। इसके बावजूद जिले की सड़कों पर बड़ी संख्या में बेसहारा गौवंश घूमता नजर आ रहा है। वे सहारा गौवंश के कारण शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क हादसों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब गौशालाओं में हजारों मवेशी दर्ज हैं और सरकार लाखों रुपए का अनुदान दे रही है, तो आखिर बड़ी संख्या में गौवंश सड़कों पर क्यों भटक रहा है? गौवंश को सुरक्षित गौशालाओं तक पहुँचाने और उनके समुचित रखरखाव की व्यवस्था प्रभारी

निगरानी की जरूरत है। प्रशासन और संभावित विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि आज। शासकीय आईटीआई स्यूपरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि मंगलवार आज दिनांक 30 जून 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी डीएसडी पोर्टल पर मोबाइल ऑनलाइन सहायता केंद्र या आईटीआई हेल्प डेस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन के बाद अभ्यर्थी को अपनी पसंद के संस्थान और व्यवसाय का चयन करना होगा। इसके बाद कॉमन रैंक सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। आज 4 घंटे बंद रहेगी बिजली सप्लाई। 33 केवी जसराजपुर फीडर पर कार्य के कारण सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जसराजपुर, सिरसौद, ठर्रा उपकेंद्रों से जुड़े सभी क्षेत्रों में बिजली बाधित रहेगी। इसी तरह 11 केवी सकलपुर पंप फीडर पर मेंटेनेंस के चलते सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक सतनबाड़ा उपकेंद्र के सकलपुर पंप से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। वहीं फूड पार्क 1 एवं फूड पार्क 2 फीडर पर कार्य होने से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फूड पार्क क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जागरूकता के साथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उप क्षेत्रीय कार्यालय शिवपुरी द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 के अवसर पर कल शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महान भारतीय सांख्यिकीविद प्रशंता चंद्र महालनोविस के जीवन पर योगदान तथा सांख्यिकी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों को विभिन्न राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षणों की उपयोगिता से अवगत कराया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक डॉ. शिवांशी शुक्ला ने सांख्यिकी के क्षेत्र में कैरियर के अवसरों एवं रोजगार की संभावनाओं की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए सांख्यिकी विषयक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। बारिश के बाद किसानों ने शुरू की सोयाबीन की बोनी। बुधवार को हुई झमाझम बारिश के बाद खेतों में पर्याप्त नमी हो गई है। किसानों ने खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी भी शुरू कर दी है। मानसून देरी से आने के कारण किसानों को खरीफ फसल की चिंता थी, बुधवार की बारिश से राहत मिली। किसानों का कहना है कि बारिश में सोयाबीन की बोनी चोरी की बोनी कहलाती है, जिसमें पूरी निर्भरता बारिश पर होती है। तेज बारिश होने पर सोयाबीन का बीज जमीन में ही सड़ जाता है, जबकि बुआई के बाद कुछ समय तक बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाती है।

आइए अब जानते हैं शिवपुरी जिले के मौसम का हाल। शिवपुरी जिले के आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मौसम में नमी यानी आर्द्रता

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ देर में हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस

0: लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि

0: दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठकर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश।

0: राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुख्य पृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industry.

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवा रहे हैं परदेश फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज़।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुहाग फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, कार्यक्रम लोकरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोकगीत गायक कलाकार आभा खरे और दामोदर शर्मा के आवाज़ में मनमोहक लोकगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में देवी गीत आभा खरे की आवाज़ में।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कार्यक्रम लोकरंग में लीजिए, सुनिए दामोदर शर्मा की आवाज में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं आभा खरे और दामोदर शर्मा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति दामोदर शर्मा की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, कार्यक्रम लोकरंग में आज हमारे लोकगीत गायक कलाकार थे आभा खरे और दामोदर शर्मा। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं राज फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत को पसंद किया है फतेहपुर रोड शिवपुरी से संस्कृति रजक आदिशक्ति रजक अंकुर रोतेले और सुरभि रोतेले ने।
1: शिद्दत एहसास से कम होता है, एक जरा हाथ बढ़ा दो तो छू

फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आगे सुनिए मन फिल्म का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। इस गीत को पसंद किया है रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता संजय वाणी, मनीष वाणी, व्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए दूल्हे राजा फिल्म का, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में। इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए दिल फिल्म का गीत उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में। इस गीत को पसंद किया है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और

कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंभे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, पटाखे की लड़ी है, आंखों में गुस्सा है, नब्बे पे गाली है।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुनिए बेटा फिल्म से अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में, जिसे पसंद किया है महादेव घाट अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में सुनिए जिले की चिट्ठी, जिसका अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से होगा।

0: ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बालाघाट जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम में हुए बदलाव का असर बालाघाट जिले में भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के कारण लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन तेज बारिश का अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में बालाघाट जिले में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जिले में बीते 1 जून से 24 जून तक कुल 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। अब बात करते हैं विश्व सिकल सेल दिवस की। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बालाघाट में मुस्कान ओपीडी के अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं जांच कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें कुल 1899 लोगों की जांच की गई। इस वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस की थीम जीवन रक्षा के अंतर को समाप्त करना, सिकल सेल देखभाल में समानता सुनिश्चित करना रही। कार्यक्रम के दौरान 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की सिकल सेल की जांच की गई और गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों, बच्चों, सिकल सेल पॉजिटिव मरीजों तथा आमजनों को रोग के प्रति जागरूक किया गया। बीते 21 जून को बालाघाट के मुलना स्टेडियम में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सांसद भारती पारधी की अध्यक्षता में सामूहिक योग में जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर मृणाल मीना, अधिकारी कर्मचारी सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और नगर के गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित ज्ञान भारतम मिशन के तहत बालाघाट जिले में प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। अब बात करते हैं किसानों के कल्याण से जुड़ी खबर की। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,36,130 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जिला स्तरीय रैंकिंग में बालाघाट जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2026 माह में बालाघाट जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगातार 2 माह तक प्रदेश के शीर्ष 3 जिलों में स्थान बनाकर बालाघाट ने किसान कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है। अब बात करते हैं खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र की। विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने चित्रकला के माध्यम से योग, स्वास्थ्य और ओलंपिक मूल्यों का संदेश दिया। इस अवसर पर 35 खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सतीश शर्मा ने कहा कि कड़े परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही भविष्य के ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार होंगे। अब बात करते हैं जिले में प्रशासनिक गतिविधियों की। भोपाल से मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बीते दिनों प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में बालाघाट जिले ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां दर्ज कर प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थान बनाया। इसी प्रकार टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण में भी बालाघाट ने 100% उपलब्धि के साथ

देश में पहला स्थान साझा किया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पंजीयन में बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। बच्चों की अपार आईडी बनाने में भी बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अब बात साइबर जागरूकता की। बालाघाट जिले में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज ललित शाकेवार, उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की उपस्थिति में बीते दिनों साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आयोजित सेफ क्लिक 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ललित शाकेवार ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। युवाओं को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण को लेकर एक अच्छी खबर है। पुलिस सेवा में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस बैंड भर्ती की घोषणा की गई है। इस क्रम में जिला पुलिस बालाघाट द्वारा अमर शहीद आशीष शर्मा निशुल्क पुलिस बैंड प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। वर्तमान में इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 250 से अधिक युवा लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रशिक्षण केवल बालाघाट तक सीमित नहीं है, बल्कि बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों के युवा भी यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस बैंड भर्ती एवं रोजगार की दिशा में

0: अभी आप सुन रहे थे बालाघाट जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं खुशबू भार्गव की आवाज़ में भजन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। आपको सुनवाने जा रहे हैं ऐतराज़ फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका, आपकी रेडियो मित्र श्वेता के साथ। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक शहर में एक बढ़िया रेस्टोरेंट था, उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। एक गरीब आदमी उसके दुकान के सामने सुबह के समय रोज आता। जैसे ही दुकान में आवाजाही बढ़ती, वो भी रेस्टोरेंट में बैठकर भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन खाता और चुपचाप भीड़ से निकल जाता। दुकान के नौकर चौकर ने देखा और इसकी शिकायत अपने मालिक से की। रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने मुस्कुराकर कहा, इस बात को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत शुक्रगुजार ऊपर वाले का कि उस गरीब व्यक्ति के भरपेट खाने से मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। तो ये थे एक अच्छे कर्म और साथ ही ईमानदारी भी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जब हम अच्छे काम करते हैं और ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा। इस बात पर हम जानेंगे आपके विचार। इसके लिए हमारे फोन नंबर हैं 2660902 और जो श्रोता साथी बाहर से हमसे बात करना चाह रहे हैं, भोपाल से बाहर से, वो उनको एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा 0755। तो इंतजार है हमें आपके विचारों का। हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्ते नमस्ते, आकाशवाणी
1: जी, आकाशवाणी भोपाल से हम बोल रहे हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: आप कौन दीदी?
1: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ। स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, है ना? पहले आप अपना नाम बताएं।
2: रमेश पेंटर, सपना से।
1: जी, तो रमेश जी कैसे हैं आप?
2: ठीक है जी।
1: जी, हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे कि जैसे हमारे जीवन में जब हम कोई काम अच्छे से करते हैं, मन लगा कर करते हैं, ईमानदारी से उस काम को करते हैं, है ना, तो उसका क्या होता है, मतलब उसके फायदे क्या होते हैं?
2: ईमानदारी से तो देखिए हर सभी चीज का फायदा है उसमें
1: जी।
2: ईमानदारी में तो सभी चीज का फायदा है।
1: हाँ जी बताएं, इससे आपके काम कैसे होते हैं, समय पर होते हैं, सफल होते हैं, बताएं।
2: अब हम ही लोग लगे रहते काम में दिन भर।
1: जी जी जी, इसके लिए आप सुबह से उठते होंगे, तैयारी करते होंगे, समय पर पहुँचते होंगे।
2: जी दीदी
1: बताएं किस तरह आप अपने काम को करते हैं?
2: अब हम लोग तो काम में लगे रहते तो लगे ही रहते हैं। हम लोग को तो काम दीवारों में लिखने जाना पड़ता है विज्ञापन।
1: अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो इसके लिए भी आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। सुबह उठते होंगे जल्दी, उठकर जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर जल्दी समय पर पहुंचते होंगे अपने काम पर।
2: घर तो भाई शाम को जब तक दिन निकला रहता है काम करना पड़ता है, दीवारों में लिखना पड़ता है, वॉल पेंटिंग।
1: जी जी, वॉल पेंटिंग। हाँ, तो मतलब यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हम पूरी ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है ना। पूरी ईमानदारी से अगर हम किसी काम को करें तो उसका फल हमें कैसा मिलेगा?
2: उसका फल अच्छा ही मिलता है
1: जी,
2: जब ईमानदारी से करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा
1: जी, यही मैं जानना चाह रही थी। तो देखिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूँ
0: जी, आपका नाम बताएं।
1: जी। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, बिरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी, तो कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैडम। कहते हैं ना, वाणी से ही बीज झरे, वाणी से ही रसधार, और मीठा वाणी बोलिए जीवन का है सार।
0: बहुत अच्छी बात, हमेशा मीठे वाणी ही बोलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल मैम। और
0: हाँ
1: आकाशवाणी जो मध्य प्रदेश होता है, बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन करता है, और इसमें जो निकलने वाली कार्यक्रम होती है, जिसमें गीत सागर, नमस्कार भोपाल, और कार्यक्रम बात आपकी गीत, हमारे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, युवाणी कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ हमें रोजगार के अवसर मिलते हैं, ये भी सब कुछ बतलाए जाते हैं मैडम जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें ये तो ये जानकर लग रहा है कि आप हमारे कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, है ना?
1: जी
0: हमें
1: बिल्कुल मैम,
0: बहुत
1: जी
0: अच्छा
1: बिल्कुल
0: लगा, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं।

0: करेंगे कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, कि जैसे किसी काम को हम करते हैं जीवन में, तो आपकी पढ़ाई लिखाई भी हो सकती है, आपका दुकान, आपके व्यवसाय, नौकरी, कुछ भी हो सकता, अगर उसको हम ईमानदारी के साथ करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में?
1: जी, काम को यदि शांति पूर्वक रूप से किया जाए तो काम बिल्कुल बेहतर बन जाता है। काम यदि अच्छे तरीके से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, तो काम बिल्कुल दुगने उत्साह के साथ पूरा हो पाता है। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, जब उसका मूल्य उसे प्राप्त होता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसी प्रकार से यदि हम अपने कामों को आनंद के रूप में यदि लें तो काम बोझिल नहीं नजर आता, बल्कि वह सम्मान भाव से अच्छा ही बनने का प्रयास होता है। तो काम को अच्छी ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए, और जीवन में अच्छा सोच रखेंगे तो सभी काम अच्छे से अच्छे हो पाएंगे।
0: बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर, है ना? आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से। जी
0: जी, तो स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: बताइए क्या हाल चाल है वहाँ का, मतलब मौसम क्या हाल
1: बढ़िया
0: चाल है।
1: है मौसम, बारिश का तो अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं।
0: अच्छा, मतलब पानी
1: जी
0: रुक रुक कर
1: नहीं,
0: गिर रहा
1: जी
0: है।
1: जी नहीं, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
0: नहीं हुई है। अच्छा
1: जी
0: अच्छा अच्छा चलिए, हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपके यहाँ अच्छी से बारिश हो ताकि ठंडक पहुँचे, है ना। तो बताएं कि कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, हम आपकी हम सब बात साझा करना चाह रहे थे कि जैसे कोई भी काम हम करते हैं जीवन में, है ना, निश्चित रूप से अपने जीवन से जुड़े कुछ काम, तो वो अगर हम ईमानदारी से करें तो उसका क्या फल मिलता है।
1: फल यही मिलता है, सफलता जरूर मिलती है, भले देर सवेर मिलती है। मतलब सही ढंग से प्रयास जब हम करते हैं, समय जरूर लगता है, लेकिन उस चीज की कीमत हमें बिल्कुल मिलती है।
0: वही मैं कह
1: हाँ
0: रही हूँ
1: जी,
0: कि कोई,
1: मतलब
0: हाँ
1: कोई
0: जी,
1: दूसरा रास्ता नहीं है ईमानदारी और सच्चाई के और जगह पहुंचने के लिए।
0: बिल्कुल, कुछ लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, झूठ बोलकर काम करते हैं, तो
1: जी
0: वो सारी चीजें कारगर सिद्ध नहीं होती।
1: जी और हो भी जाए तो वो एक समय तक रहता है,
0: बस छोटे से
1: लेकिन
0: समय
1: जो
0: के लिए।
1: चीज हम मेहनत
0: हाँ
1: से और लगातार प्रयास से करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती है।
0: बिल्कुल, और वही मौलिक रूप में हमारे साथ होती
1: जी
0: है ना। आपने फोन किया, बहुत अच्छे विचार हम पे बांटे, इसके लिए आपका
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी नमस्ते।

0: जी नमस्ते।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी। सादर नमस्कार।
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं बहुत पुराना श्रोता, 70 के दशक का श्रोता हूँ,
0: जी
1: राजेश नेमा, सिंहपुर बड़ा से।
0: जी तो
1: और
0: आपका
1: आप
0: जी हम
1: हमारे
0: जानते हैं
1: पत्र
0: बिल्कुल।
1: शामिल नहीं कर रहे आपकी फरमाइश में।
0: अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल जानती हूँ आपको। आप हमारे बहुत पुराने श्रोता
1: जी
0: साथी हैं है ना। और
1: नियमित पत्र भेज रहे हैं, कृपया शामिल
0: बिल्कुल
1: कीजिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल है ना।
1: जी
0: और हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे पुराने श्रोता साथियों से हमारी बात
1: जी
0: होती
1: मैं
0: है ना।
1: तो काफी पुराना श्रोता
0: जी
1: हूँ और उस समय का श्रोता हूँ जब। जी
0: बिल्कुल। तो अब हम आपसे कुछ विचार जानना चाहेंगे, बात
1: जी
0: आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में,
1: जी जी
0: कि अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप अपने जीवन से जो जुड़े रिश्ते हैं है ना, बहुत सारे रिश्ते
1: जी
0: हैं, हम माता पिता हैं, भाई बहन हैं है ना,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: जी
0: मित्र हैं, तो इसमें अगर हम ईमानदार हैं, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभा रहे हैं, अपने सारे काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उसका क्या फल मिलता है हमें
1: जी
0: बताएं।
1: बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। रिश्ते आज के समय में वैसे भी भाग दौड़ बहुत है, तो
0: जी
1: निश्चित रूप से रिश्ते तो निभाना ही चाहिए, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो रिश्ते ही काम आते
0: जी
1: हैं।
0: हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्हें हम सम्मान दें, प्यार दें और उनके अनुभव से सीखें, क्या लगता है
1: बिल्कुल,
0: आपको?
1: बहुत आवश्यक है। वो तो बुजुर्ग एक

0: करते हैं
1: जी
0: उनका सानिध्य नितांत आवश्यक है।
1: और हम बहुत कुछ उनसे सीखते हैं, नहीं है
0: बिल्कुल, बहुत वो
1: ना।
0: तो
1: आजकल
0: जरूरी
1: ऐसा हो
0: चीज है।
1: गया
0: जी
1: है कि बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं रहता है, मोबाइल के लिए
0: जी
1: इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें समय देते
0: जी
1: हैं। लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी बातों को सुने, उनके अनुभवों को सुने, तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या लगता है आपको,
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल, बहुत आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि जब इंसान मशीन हो गया है तो रिश्ते कोई भी हो संभाल के रखना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: और सबसे जो बुजुर्ग हैं उनसे तो निश्चित रूप से सानिध्यता होनी ही चाहिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि एक वो जीवन का पूरा निचोड़ होते हैं और सच्ची सीख भी देते हैं।
1: बिल्कुल। और परिवार के साथ अगर हम एक समय में मिल बैठ कर खाना खाएं, है ना, तो वो भी
0: हाँ
1: बहुत
0: बिल्कुल,
1: अच्छा
0: वो
1: है।
0: जी बिल्कुल, वो एक परिवार के साथ रहना और मिलकर बैठ के बातें करना और सानिध्य बनाए रखना, ये आज के समय की मांग है।
1: और इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सुलझ जाती हैं।
0: हाँ बिल्कुल, जी
1: हाँ,
0: बिल्कुल,
1: और
0: जीवन का
1: हम
0: निचोड़ मिलता है
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: आने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाए
1: इसका भी
0: उसकी
1: समाधान
0: एक
1: मिलता है।
0: विस्तृत जानकारी भी मिलती है।
1: बिल्कुल, तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपके पत्र आप हमें भेजते रहिए, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, मैं तो
1: बिल्कुल
0: बहुत आकाशवाणी भोपाल का तो मैं 70 के दशक का श्रोता हूँ
1: बिल्कुल बिल्कुल तो
0: और उस समय भी सुनता था और आज भी सुन रहा हूँ,
1: जी
0: और सभी कार्यक्रम लाजवाब है।
1: जी धन्यवाद। और आज आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत करते हैं। आपका नाम
1: जी
0: बताएं।
1: नमस्ते मैम, नमस्ते
0: नमस्ते।
1: मैम,
0: हाँ नाम
1: मैं
0: बता
1: रानीकलिया छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ। मैम
0: जी।
1: क्या विषय रखा सर मैम आपने आज?
0: अपनी जगह का नाम एक बार हमें फिर से बता
1: जी
0: दें।
1: रानीकलिया छतरपुर मध्य प्रदेश,
0: जी
1: छतरपुर से।
0: हाँ, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम
1: थैंक यू,
0: बात
1: थैंक यू
0: आपकी
1: मैम, थैंक यू जी।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हमने विषय रखा है कि आप कोई भी काम करते हो जीवन में, अगर आप उसे ईमानदारी से करते हैं, है ना, अपने जीवन से जुड़े सारे अच्छे काम, अगर हम पढ़ाई करते हैं, व्यवसाय है, नौकरी है, हमारा परिवार, इन सभी चीजों में अगर हम ईमानदार हैं तो उससे हमें क्या लाभ है?
1: ईमानदारी से तो अच्छा कोई है नहीं मैम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
0: जी
1: तो उसका तो सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा रहेगा। यदि आप अपने कर्तव्यों में, अपने व्यवस्थाओं में अगर ईमानदार हैं, संबंधों
0: जी
1: में ईमानदार हैं आप,
0: जी
1: तो हमेशा आप सक्सेस रहेंगे, है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल। हाँ
1: थोड़ी देर के लिए टाइमिंग दिक्कतें आती हैं, ये आ
0: जी
1: सकती हैं आज के परिवेश के हिसाब से,
0: जी
1: लेकिन अंततः विजय आपके ईमान की ही होगी, आपकी ईमानदारी की ही होगी, है
0: जी जी जी
1: ना।
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए ईमानदार होना तो एक बहुत मतलब अच्छी चीज
0: हाँ
1: है ना जी,
0: जी
1: है
0: बिल्कुल।
1: ना। और बाकी तो इधर तो मतलब आज के जैसे वातावरण बदल रहा है,
0: जी जी
1: उसी हिसाब से लोग इधर उधर सब मतलब होते रहते हैं काम, कभी इससे कुछ कह दिएगा, कभी उससे कुछ कह दिया, लेकिन अंततः जो है वो ईमानदारी ही आपको सक्सेस की राह पे लेके जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो आपके काम हो, है ना, कोई भी
1: जी
0: क्षेत्र हो, अगर आप उसमें लगन है, आप में ईमानदारी है आप में, तो
1: जी
0: आप जरूर सफल होंगे, है ना।
1: नहीं डेफिनेटली वो है ही है
0: जी
1: भाई। वो
0: बिल्कुल
1: सक्सेस का तो एक तो कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई मतलब उसका वो नहीं है, उसमें कोई
0: जी
1: मिलावट करके आप काम करें वो नहीं
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना।
0: जी बिल्कुल
1: ईमानदारी के संबंध डायरेक्ट आत्मा से
0: बिल्कुल बिल्कुल। आ
1: है ना।
0: देखिए,
1: तो आत्मा
0: हाँ
1: में मिलावट नहीं चलती मैम,
0: बिल्कुल, है ना।
1: दुनियादारी मिलावट चल जाएगी, लेकिन
0: हाँ
1: आत्मा और परमात्मा मिलावट नहीं चलेगी। आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा, तभी आप
0: बिल्कुल
1: सक्सेस हो
0: बिल्कुल
1: पाएंगे। सही
0: बिल्कुल, तभी आपका
1: मान रही हो
0: जीवन
1: आप?
0: सहज सुंदर होगा, है ना।
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल
0: फोन
1: मैम।
0: किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: ओके, थैंक यू मैम।

0: जी नमस्कार। कार्यक्रम
1: नमस्कार दीदी।
0: बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: जी तो स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में। और आज
1: धन्यवाद
0: हमने
1: दीदी आपको।
0: जी आज हमने विषय रखा है कि जीवन में आप अपने काम के प्रति अगर ईमानदार हैं तो उससे क्या फायदे हैं आपको।
1: दीदी जीवन में अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं
0: जी
1: तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है और असफलता का नाम नहीं रहता है।
0: बिल्कुल। और अगर आप लगन से करते हैं है ना, साथ ही साथ
1: उसमें उसमें आपको तरक्की होना ही होना है।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ ये ईमानदारी अगर आप जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ रखते हैं तो उससे फायदा होता है आपको, है
1: बिल्कुल दीदी,
0: ना। परिवार में
1: सबका विश्वास बना रहता है
0: बिल्कुल, जैसे
1: और
0: आपके
1: अच्छा
0: बड़े
1: लगता
0: बुजुर्ग
1: है।
0: हैं घर पर, बड़े बुजुर्ग हैं है ना, उनका आप
1: जी।
0: सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं तो इससे आपको फायदा मिलता
1: जी, जो हमारे बड़े हैं तो वो अपना अनुभव हमसे शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा ज्ञान हो जाएगा
0: ना। बिल्कुल
1: और हम अपना ज्ञान बच्चों को शेयर करेंगे उनको भी ज्ञान हो जाएगा।
0: बिल्कुल। और काम जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं या कहीं पर आपका व्यवसाय है, अगर आप इन कामों में झूठ बोलते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं तो इससे आपको सफलता अगर मिलती है वो सफलता बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती। क्या सोचते हैं
1: बिल्कुल
0: आप?
1: दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं जी। समझिए,
0: अगर हम मेहनत
1: मैं
0: हैं
1: दुकानदार हूँ
0: जी
1: तो मेरा बिजनेस है,
0: जी जी
1: तो अगर बिजनेस के प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा, ग्राहकों के प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा,
0: बिल्कुल
1: तो कोई एक बार किसी को धोखा दे सकते हैं।

0: दे सकती हैं।
1: बिल्कुल है ना, बहुत अच्छी बात कही आप। ग्राहकों के प्रति अगर ईमानदार हैं, उन्हें अच्छा सामान दे रहे हैं, तो वो आपकी दुकान में आएंगे ही।
0: जी बिल्कुल दीदी जी,
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: आपका कारोबार बढ़ेगा, है ना जी। आपने फोन किया और बहुत ही अच्छे विचार हम तक बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: जी, नमस्कार दीदी, धन्यवाद आपको भी।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ कार्यक्रम बात आपके गीत
1: वंदे
0: हमारे।
1: मातरम।
0: जी नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: किशन घी वाला।
0: जी तो कहाँ से
1: हेलो,
0: बात कर रहे हैं आप, आपकी जगह का नाम बताएं।
1: दमोह।
0: जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, ये कार्यक्रम में आपका फोन लगा है और हम बात कर रहे हैं आज ईमानदारी के गुण की, कि अगर आप ईमानदार हैं तो उससे आपके जीवन में आपको क्या फायदा है।
1: बहुत अच्छा विषय है,
0: जी
1: मेरा ही विषय है ये। जी,
0: जी जी जी
1: सुनिए,
0: हाँ
1: मेरा ऑटोमोबाइल का काम है। तो
0: जी जी जी
1: यदि हम दुकान चलाते हुए, अपना व्यापार करते हुए ईमानदारी से, मतलब जिस चीज का जो रेट है वही बताते चले जाते हैं सबको, तो वो फिर हमें याद नहीं करना पड़ता। एक दो बार बस देखा कि इसमें गेयर की कीमत 920 है, तो सबको 920।
0: बहुत
1: आप
0: अच्छी बात।
1: समझाइए।
0: हाँ जी बिल्कुल, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रही हूँ। अगर आप ईमानदार हैं तो निश्चित रूप से
1: दूसरी
0: आपका कारोबार बढ़ेगा,
1: चीज,
0: है ना।
1: अब हमारे यहाँ वर्कशॉप है,
0: जी जी
1: सर्विस सेंटर है मारुति,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उसमें जो भी पार्ट लगता है,
0: जी जी
1: जो भी, चाहे वो 2 रुपए का बोल्ट है या स्क्रू है, और चाहे वो 5,000 रुपए का कोई पार्ट है, तो ईमानदारी से उतना ही लिखा जाता है उसमें। हेरा फेरी या आज की भाषा में कट पट कुछ नहीं किया जाता।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और
1: वो फिर हमेशा के लिए, कोई भी हमारा बिल देखता है तो हमारे बिल ऑनलाइन जाते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: जरा भी उसमें संशय नहीं रहता है। कोई अगर 6 महीने बाद भी बिल देखे कि आपकी मारुति, हमारी मारुति में ये काम हुआ था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: बराबर हुआ था, ये
0: बिल्कुल
1: पार्ट
0: बिल्कुल,
1: लगा था।
0: ये बहुत विश्वास की बात है और आपका एक भरोसा रहेगा अपने ग्राहकों के लिए। तो
1: तो उससे बहुत फायदा होता है,
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: लाभ होता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखिए
1: ईमानदारी।
0: हाँ फोन किया
1: ये मेरा
0: और
1: व्यक्तिगत अनुभव है।
0: बिल्कुल बहुत
1: अब
0: अच्छा
1: आप
0: अनुभव,
1: बताइए, कुछ
0: बहुत
1: आप
0: अच्छा
1: भी
0: अनुभव।
1: बताइए।
0: हाँ तो बस हम इस कार्यक्रम में तो आपके विचार जानना चाह रहे हैं, आपके अनमोल विचार जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपने
1: कुछ
0: फोन
1: हमें
0: किया।
1: भी आपसे सीखने को मिल जाता ना,
0: जी जी
1: कुछ
0: जी
1: आप भी बता दीजिए, आप कौन
0: नहीं
1: बोल
0: नहीं
1: रही हैं।
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ और आपसे जो विचार हमने सुनने को मिले वो बहुत अच्छे लगे, है ना। इसके लिए आपका
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम कह सकते हैं।
1: आपको भी
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: कभी तो हंसाए
1: कभी ये रुलाए। जी नमस्ते।
2: जी नमस्कार बहन जी,
1: आपका नाम बताएं।
2: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजना, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
1: जी तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका फोन लगा है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, है ना।
2: जी,
1: और आज हम बात कर रहे हैं ईमानदारी के गुण की, कि हम अपने जीवन में अगर किसी भी काम से जुड़े हुए हों, अपने जीवन से जुड़े अच्छे काम, आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, पढ़ाई, तो इन सब चीजों में ईमानदारी के क्या मायने हैं।
2: ईमानदारी के मायने है कि जैसे अगर अपन ईमानदारी से काम करते हैं तो अपन को मतलब पीछे नहीं हटना पड़ेगा, सफलता ही सफलता मिलती जाएगी आगे के लिए।
1: जी बिल्कुल,
2: और ईमानदारी से भी काम करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और कोई काम है तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेफिजूल का पैसा ही लेना चाहिए किसी का। जो काम करे वो ईमानदारी से करे।
1: बिल्कुल, अगर ईमानदार हैं हम तो निश्चित रूप से मतलब एक भरोसा कायम होगा हमारा।
2: जी जी,
1: लोगों के प्रति, है ना, और लोग हम पे विश्वास करेंगे, है ना।
2: जी बिल्कुल,
1: और हम निश्चित रूप से सफल होंगे।
2: जी
1: तो
2: जी, आज आप शायद मुश्किल लग
1: रहे हैं। नहीं, मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
2: अच्छा, है ना, आपसे पहली बार बात हो रही
1: है। जी जी जी, और आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। इस कार्यक्रम में आज मैं थी आपकी रेडियो मित्र श्वेता। तो सभी को मेरा नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर अमरवीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण के कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पंचायतों, शासकीय विभागों, निजी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों और समूहों सहित जागरूक नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भोपाल के गांधी भवन में आज शाम 6 बजे भारत में भाषाओं की भूमिका विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आ गले लग जा, इस फिल्म का गाना आवाज़ है किशोर कुमार सुषमा श्रेष्ठा की, साहिर लुधियानवी के बोल है और संगीत है आर डी बर्मन का। और इस गाने को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, और साथ ही साथ ये फरमाइश हम तक आई है शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, सरोज, आरती, रितिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ ने इस गाने को पसंद किया है। तो चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म आ गले लग जा का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये पत्र हम तक आया है राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन का, और साथ ही साथ उपाध्याय नगर से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, और साथ ही साथ नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत, आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म लोफर का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी की बोल है, और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब सुनिए फिल्म राम लखन का गाना, मनहर अनुराधा और साथियों की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है बड़वाहा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी शिमाली, और ये फरमाइश है पटेल नगर पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू ने इस गीत को पसंद किया है।

स्वातंत्र फिल्म का गाना सुनिए, आवाज़ लता मंगेशकर की। गाने को लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है उषा खन्ना का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, साथ ही अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, राव और शाहिद ने इस गाने को पसंद किया है। और अकोला से रमेश और वैशाली ने इस गीत को पसंद किया है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं तुम बिन। इस फिल्म का गाना आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और साथियों की। फैज़ अनवर ने गाने को लिखा है और संगीत है निखिल विनय का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं दत्तरंगी से भागवत वर्मा, गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और सिंगारपुर से सालिक पुजारी। साथ ही साथ इंदौर से ये फरमाइश हम तक आई है लाल फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी में अब तक आपने सुना, हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को विजय हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली गई और समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर राजकुमार ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप करके स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा, सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट ने उसे एक अलग महल दे दिया जहाँ भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजय श्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला कि चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी में।
1: नीच स्त्री, कहाँ गई वो चिकित्सिका?
2: वो उधर छुप रही है स्वामी।
1: ठहर चांडालनी, निकाल वो विष की शीशी, कहाँ छुपा रखी है? निकाल कुलटा।
3: निकालती हूँ, ये रही सम्राट।
1: अरे नक, इससे दोनों हार भी छीन लो।
2: चल निकाल, दोनों हार कहाँ है?
3: ये है सम्राट।
1: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।
3: सम्राट,
1: इस प्रासाद में रहने वाले सभी दास दासियां देख लो, अपनी साम्राज्ञी की काली कर दूं तो। इसने अपनी बहन को बुलाया था भुवन मोहिनी की हत्या के लिए। ये कृतज्ञ स्त्री भुवन मोहिनी के त्याग और बलिदान के बदले उसे विष दिला रही थी।

0: महाराज आदित्य सेन की पुत्री का वास्तविक स्वरूप देख लिया? देख लो अच्छी तरह से, देख लो सब और जान लो इसके चरित्र को अच्छी तरह से। भुवन मोहिनी ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया इसके लिए। प्रतिकार में ये क्या दे रही थी भुवन मोहिनी को? ये विष की शीशी जिसके स्पर्श मात्र से किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। इन हत्यारियों के सुंदर चेहरों के धोखे में आकर तुम लोग भी इनके कहने पर आ गए। ये विमला नाम की स्त्री कोई चिकित्सिका नहीं, ये डायन है, डायन। सैनिक स्त्रियों ले जाओ इन दोनों को, इसी महल में अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। और सुनो ध्यान से, किसी ने भी लालच में आकर इन दोनों में से किसी की भी कोई सहायता की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों को कोई वस्तु ना दी जाए। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों से किसी को बात ना करने दिया जाए, भले ही वो राज परिवार का ही क्यों ना हो। यदि मुझे इसकी जानकारी मिली कि किसी भी प्रकार की शिथिलता की गई तो उसे मैं राजद्रोह मानूंगा। राजद्रोह! ये आदेश राज परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भी है।
1: सुन रहे

0: राजमाता, राजमाता।
1: क्या हुआ संरक्षिका, क्या हुआ? तुम सब लोग इतनी डरी हुई क्यों हो?
0: राजमाता, आज हम सब ने सम्राट का वो रूप देखा जो भगवान न करे कभी किसी को दोबारा देखना पड़े।
1: क्या हुआ?
0: सम्राट साम्राज्ञी और उनकी अतिथि बहन विमला को अंतर कक्ष से मारते पीटते बाहर ले आए और बंदीगृह में बंद करा दिया।
1: क्या कहा? किस अपराध में?
0: भुवन मोहिनी की हत्या के प्रयास के अपराध में।
1: क्या?
0: हाँ,
1: साम्राज्ञी ऐसा नहीं कर सकती। चलो मैं देखती हूँ।
0: परंतु?
1: क्या परंतु, मैं स्वयं देखती हूँ, तू घबरा मत। संरक्षिका, गांधारी स्त्रियों से कहो बंदी गृह का द्वार खोले।
0: क्षमा राजमाता, क्षमा। सम्राट का आदेश है, इन अपराधिनियों से कोई नहीं मिल सकता, चाहे वो राज परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो।
1: क्या?
0: हाँ।

0: राजमाता का पांचवां पत्र आया है आपसे मिलने के लिए।
1: मैं नहीं मिलना चाहता। भुवन मोहिनी कैसी है?
0: तेजी से सुधार हो रहा है।

0: अरण्यक, सबको कहो कि बंदी गृह के सामने मेरे आदेश को सुनने के लिए उपस्थित हूं।
1: जो आज्ञा।
2: अंतःपुर के सभी राज कर्मचारी सम्राट का आदेश सुनने के लिए बंदी गृह के समक्ष उपस्थित हों। शीघ्रता करो।
3: सम्राट, सम्राट हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट हमें, सम्राट क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट, सम्राट, सम्राट।
0: कितनी बार चंद्रहासिनी, कितनी बार क्षमा करूं? यदि भुवन मोहिनी की हत्या तुम कर चुकी होती तब भी क्या तुम क्षमा मांगती?
4: प्रणाम सम्राट,
5: प्रणाम सम्राट,
4: प्रणाम सम्राट।
0: इनमें से महिला मजदूर कौन है?
4: हम लोग हैं सम्राट, हम लोग हैं।
3: अंतिम बार, अंतिम बार सम्राट, आपको अपने बच्चे की सौगंध, हमें क्षमा कर दीजिए सम्राट, हमें क्षमा कर दीजिए।
0: मैं विवश हूं चंद्रहासिनी तुम्हारे छल कपट से, इसलिए अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। सुन लो सब लोग, एक बार पुनः मैं इन दोनों के अपराधों को दोहराता हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी ने अपनी ममेरी बहन विमला को बुलाकर भुवन मोहिनी के प्राण लेने की चेष्टा की थी, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी अस्वस्थता के समय स्वयं उसके जीवन की रक्षा कर रहा था। कई बार क्षमादान दे चुकने के बाद भी साम्राज्ञी ने मेरे और मेरे आदेशों की हर संभव उपेक्षा की। महिला श्रमिकों को मेरा आदेश है कि प्राण हत्या के प्रयास के आरोप में चंद्रहासिनी और उसकी बहन विमला की कोठरियों को बंद कर दिया जाए। वो दोनों बहनें दीवारों के भीतर चुनवा दी जाएं आज ही।
3: नहीं।

0: क्या किया तुमने? चंद्रहासुनी को मृत्यु दंड का परिणाम अनिष्टकारी होगा पुत्र, अनिष्टकारी। संभवतः महाराज, आदित्य सेन अपनी एकमात्र संतान के जीवन विनाश की कहानी धैर्य पूर्वक न सुन सके और चंद्रहासिनी और विमला का निधन किसी सर्वनाश को न आमंत्रित कर बैठे पुत्र।
1: राजकीय आदेशों के प्रति किसी को कोई असहमति नहीं होनी चाहिए माँ। गंभीरतम अपराधों का दंड भी गंभीर और भयानक होता है। चंद्रहासिनी राजकुमारी बनकर भी अपने जीवन में महानता को स्थान न दे सकी। भारत राष्ट्र की साम्राज्ञी ऐसे नीच षड्यंत्रों का आश्रय ले, इसका प्रभाव सारी जनता पर कितना भयानक पड़ता, कभी सोचा है आपने? मुझे दुनिया क्या कहती यदि मैंने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया होता, तो संभवतः कल वो मुझसे ही प्रतिकार लेने को तत्पर हो जाती। निरंतर मेरी उपेक्षा करके बारंबार क्षमा और अभयदान का अनुचित लाभ उठाया है उसने। ऐसी अनैतिक घटनाओं का जनजीवन पर सर्वदा भयानक प्रभाव पड़ता, इसलिए जैसा अपराध साम्राज्ञी ने किया वैसा ही दंड उसे भोगना भी पड़ेगा।
0: मैं क्या करूं जिससे मेरी पुत्र वधू का जीवन बच जाए? चाहती तो ये हूं कि बंदी गृह का द्वार तोड़वा दूं, परंतु सम्राट ने वहां सैनिक पहरा बिठा दिया है। क्या होगा मेरे 5 वर्ष के पौत्र का, जो मातृविहीन होकर अति दीन मलिन सा दीख पड़ने लगा है। अब मुझे ही उसे अपने संरक्षण में रखना होगा। अब मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं कि अपने वृद्ध पति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं।

0: अब मैं जीना नहीं चाहती। ये सारा कलंक मुझ पर ही आरोपित किया जाएगा ना। दुनिया तो यही कहेगी कि सम्राट ने एक नर्तकी का पक्ष लेकर स्वयं अपनी साम्राज्ञी को मृत्यु दंड प्रदान किया है। अब मैं जीकर क्या करूंगी। ये कलंक ढोने से उचित तो ये है कि अब मैं रुग्ण शैया से उठूं ही ना।
1: नहीं देवी भुवन मोहिनी, ऐसा मत सोचिए, अन्यथा सम्राट तो और भी दुखी हो जाएंगे। वो अपने निर्णय से अभी ही बहुत दुखी हैं। एक मास हो गए वो संपूर्ण कार्यों से जैसे संन्यास ले चुके हों, एकांत वास में ही हैं।
0: जिस राजकुमारी के सुख के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अंत में उसी का अस्तित्व ना पाऊं तो मेरा समर्पण तो व्यर्थ ही हो गया।

0: सम्राट का क्या होगा? अरण्यक, जी चाहता है कि एक बार सम्राट को जाकर मैं स्वयं समझाने का प्रयत्न करूं।
1: कोई लाभ नहीं होगा देवी, सम्राट किसी से भी नहीं मिलना चाहते। इतना अवश्य कह सकता हूं कि मैं आपकी मनोभावनाओं को उन तक अवश्य पहुंचाऊंगा।

0: असक्त रणभिष्वंगः पुत्र दार गृहदिशु। मैं स्त्री पुत्र और गृहादिक के निर्मम सामीप्य से अपनी अंतरात्मा को मुक्त कर चुका हूं। बस अरण्यक भुवन मोहिनी की धुंधली स्मृति मात्र से मुक्त नहीं हो पाया। कैसी है वो?
1: पूरे प्रकरण से वो बहुत ही आहत है मित्र। वो आपसे मिलना चाहती है।
0: नहीं अरण्यक, जब मैंने निर्मम न्याय के चरणों में साम्राज्ञी का बलिदान कर दिया, तब भुवन मोहिनी के प्रति आसक्ति को भी छोड़ना होगा, क्योंकि भुवन मोहिनी के स्त्री सौंदर्य के उपभोग करने की लिप्सा ने ही तो इस बलिदान की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जिस पर चढ़कर चंद्रहासिनी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यदि विवाहिता पत्नी को पति के संपूर्ण प्रेम की आकांक्षा थी तो वो पाप नहीं था, मैं जानता हूं, किंतु संपूर्ण स्नेह दान न मिलने पर उसके हृदय में द्वेष और प्रतिहिंसा की भावना जागृत हुई और निरपराध भुवन मोहिनी का सर्वनाश करने की कुचक्र ने उसे मृत्युदंड दिलाया। इसमें मेरा क्या दोष? चंद्रहासिनी ने तो स्वयं ही मेरी पत्नी बनने का आग्रह किया था, ये जानते हुए कि मैं भुवन मोहिनी के प्रति अपने को पूर्णतः समर्पित कर चुका था। भुवन मोहिनी उदारता पूर्वक उसका स्वागत करती रही और उसके मांगने पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसके बाद भी चंद्रहासिनी को कृतघ्न बनकर भुवन मोहिनी को विषपान कराने के षड्यंत्र में नहीं तल्लीन होना चाहिए था। इस निर्णय का मुझे कोई पश्चाताप नहीं। चंद्रहासिनी ने जैसा किया वैसा ही परिणाम पाया। अरण्यक, मैं भुवन मोहिनी से मिलना चाहता हूं, उसे बुला लाओ आज ही।
1: जो आज्ञा मित्र।

0: ये मैं क्या देख रही हूँ? प्रस्तर हृदय वाला भारत का सम्राट अपनी करुणा से स्वयं विगलित है। आपके नेत्रों में करुणा की ये अश्रुधारा क्यों?
1: मैं सम्राट होकर भी आज दीनहीन बन गया हूं भुवन। अब इस अभिशापित जीवन का अंत

मैंने अपना सर्वनाश कर डाला। मैं यदि सम्राट न होता तो शायद इतनी क्रूरता मेरे जीवन में ना आती। आज मैंने अपने इकलौते पुत्र को मातृत्व के सुख से वंचित कर दिया, माता पिता को अपनी सेवकनी पुत्र वधु से वंचित कर दिया। मुझे क्या मिला?

आज चंद्रहासिनी मेरी अंतर्दृष्टि के अत से इति तक समाई हुई है। मानो नेत्रों में आंसू भरे दया की भीख मांग रही हो।

0: और मेरे सामने भीषण रक्त सागर उद्वेलित होता दिखाई पड़ता है।
1: रक्त सागर?
0: महाराज आदित्य सेन की प्रतिच्छाया मानो भीषण प्रतिकार के लिए उद्विग्न। वो अपने प्राणों से प्रिय एकमात्र संतान के सर्वनाश का प्रतिकार लेना चाहते। बड़े बड़े सामंतों की नंगी तलवारें बयान से निकल चुकी हैं और वो चंद्रहासनी के मृत्यु का पाप प्रक्षालन करने के लिए चंडी की जिह्वा बनकर मेरी सेना और स्वयं मेरे शरीर का रक्त दान मांग रही है। मेरी न्याय प्रियता का भयानक परिणाम प्रतिशोध की रक्त वैतरणी है भुवन मोहिनी, जिसमें मेरे सहित साम्राज्य की सेना को भी निमग्न होना होगा।
1: देव, क्या महाराज आदित्य सेन भारत सम्राट से युद्ध चाहते हैं?
0: हाँ भुवन मोहिनी, मुझे सूचना प्राप्त हो चुकी है कि वो बड़ी तत्परता के साथ भयानक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उनकी सेना की जितनी चिंता नहीं है, उससे अधिक भय है कि बारंबार पराजित होने जाती हमारे आपसी वैमनस्य का लाभ उठाकर भारत भूमि पर अधिकार करने का प्रयास करेगी, जिसका संभव परिणाम राष्ट्र की स्वतंत्रता का अपहरण होगा और भारतीय राष्ट्र शताब्दियों सहस्त्राब्दियों तक पराजय और दासत्व के कलंक का टीका लगाकर विदेशी आक्रामक शक्तियों के चंगुल में फंस जाएगा।
1: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव

0: परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
1: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
0: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
1: टाला जा सकता है।
0: कैसे?
1: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस के अवसर पर अमर वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा है कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जहाँ विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैरवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, महफिल में आ जाती है जान आपके आ जाने से। स्वागत बंदन अभिनंदन प्यारी सखियों का कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं आपकी सखी शालिनी सोनी। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं प्यारी सखियों? माना कि व्यस्त होंगी, पर आइए बैठ जाइए कुछ सुकून के पलों के साथ और भूल जाइए सारी मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफें। आज की महिला सभा में हम खुलकर बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ नया सीखेंगे और जिंदगी के सफर को और हसीन बनाएंगे। चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र सेवा के शानदार 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस स्वर्णिम यात्रा में सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ देश ने अभूतपूर्व प्रगति, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और कई योजनाओं की ऐतिहासिक पहल ने करोड़ों नागरिकों का जीवन बदल दिया है। सखियों, मोदी जी के मजबूत इरादों ने हर क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। आज का आत्मनिर्भर भारत उनके अद्वितीय समर्पण और निर्णायक नेतृत्व की जीती जागती मिसाल है। और सखियों, आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। ये दिन लोकतंत्र को मजबूत करने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सरकारों को जवाबदेह बनाने में संसदों की भूमिका को मान्यता देने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2018 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत की गई थी। 30 जून की ये तारीख अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU की स्थापना का भी प्रतीक है। सखियों, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की संसदों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, समावेशी और आधुनिक चुनौतियों जैसे प्रौद्योगिकी और लैंगिक समानता के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सखियों, हमें भी लोकतंत्र को समझना होगा, लोकतंत्र की जानकारी रखनी होगी। संसद क्या है, विधानसभा क्या है, सांसद या विधायक का क्या काम होता है, कानून कैसे बनते हैं, ये जानना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। साथ ही साथ सवाल पूछें, जवाबदेही तय करें, कानून का पालन करें। संसद कानून बनाती है, पालन करना हमारा धर्म होता है। बहस में हिस्सा तो लें मगर मर्यादा बनाए रखें। राजनीति से दूर नहीं रहें बल्कि जिम्मेदारी से भागीदारी करें। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें सखियों। जानो, वोट करो, सवाल पूछो, कानून मानो, भागीदारी करो, यही 5 शब्द नागरिकता का धर्म भी है। संसद मंदिर है लोकतंत्र का सखियो, उसकी मर्यादा, उसकी ताकत बनाए रखना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इतनी सारी जानकारी के बाद सखियो, अब बारी है मनोरंजन की। लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है एक प्यारा सा गीत।

एक बार पुनः स्वागत है प्यारी सखियों का कार्यक्रम में। सखियों, मोदी जी ने कहा है ना, नारी शक्ति ही देश की शक्ति है और इसी सोच को बढ़ावा दे रही है पीएम मुद्रा योजना। जी हाँ, पीएम मुद्रा योजना। आज हम बात कर रहे हैं पीएम मुद्रा योजना की और इस योजना का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मतलब छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने वाली योजना। आपके मन में क्या है सखियों? सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं या अचार पापड़ का बिजनेस करना चाहती हैं? टिफिन सर्विसेज, डेयरी, बकरी पालन या ऑनलाइन रिसेलिंग, जो भी सपना आपका हो सखियों, वो पूरा करेगी मुद्रा योजना। और सबसे बड़ी बात तो ये है बहनों, वो भी बिना गारंटी और बिना सिक्योरिटी के। सिर्फ आपका जज्बा और एक छोटा सा बिजनेस प्लान होना चाहिए आपके पास। लोन भी आपकी जरूरत के हिसाब से तीन हिस्सों में बांटा गया है सखियों। शिशु लोन यानी कि आप 50,000 तक का लोन ले सकती हैं जब आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हों, जैसे सिलाई मशीन खरीदनी है। किशोर लोन जिसमें आप 50,000 से लेके 5,000 तक का लोन ले सकती हैं, जैसे आपको अपनी मशीनों को बढ़ाना है, 2 से 3 नई मशीनें लाना है। तरुण लोन में आप 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकती हैं जब आप अपना कोई नया शोरूम खोलना चाहती हैं। ब्याज भी बहुत कम है सखियो और चुकाने के लिए 5 साल तक का समय मिल जाता है। घर बैठे पैसे तो नहीं आएंगे बहनों, सरकार आपका हाँ जरूर पकड़ेगी। चूल्हा चौका संभालने वाली नारी जब कलम पकड़ लेती है और हिसाब संभालने लगती है ना सखियो, तो घर भी चलता है और देश भी बनता है। तो सखियो, देर किस बात की, अपने नजदीकी बैंक, जनधन केंद्र या CSC सेंटर जाइए। आधार कार्ड, फोटोकॉपी और बिजनेस का आइडिया लेकर जाइए, फॉर्म भरिए और करा लीजिए अपना लोन। याद रखिए सखियो, सपना आपका, हौसला आपका और साथ सरकार का। तो फिर देर किस बात की, उठो बढ़ो और बन जाओ आत्मनिर्भर भारत की असली शिल्पकार। और सचमुच सखियो, जब सबका साथ मिलता है ना, निश्चित ही कुछ नया करने का जज्बा आ ही जाता है। आज के क्रम मेरी उड़ान में हमारे साथ हैं सखी तृप्ति कुमायू, जो कि हैं इंटीरियर डिजाइनर। तो आइए इनसे बात करते हैं क्रम मेरी उड़ान में।

0: तृप्ति जी, आपको हमारा नमस्कार, और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में।
1: जी नमस्कार मैम। बेसिकली मैं पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मैं इस इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोफेशन को पिछले 8 से 10 सालों से कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के घरों का इंटीरियर किया है, डेकोरेशन में हेल्प की है, और उनके हमने जो घर के जो हमारे फर्नीचर होते हैं उनको बनाने में हमने हेल्प की है। तो ये काम मैं पिछले 8 से 10 सालों से कर रही हूँ, और हमारा एक है इंस्टीट्यूट, वो मैं रन कर रही हूँ जो कि डिजाइन सॉल्यूशन के नाम से है, जहाँ पर हम बच्चों को इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज सिखाते हैं, ताकि बच्चे अपने हुनर को देखें और उसको लेके वो अपने करियर में आगे बढ़े। मैं अभी इस प्रोफेशन में काम कर रही हूँ।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बच्चे इस और आगे बढ़े। अभी हम देख ही रहे हैं कि त्योहार का समय चल रहा है और सभी अपने घर को रिन्यू कराने में, रिनोवेशन में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत व्यस्त होंगी। और मैं बस ये जानना चाहूंगी और इसके बाद, कि आपने अपने जो इस काम की शुरुआत है वो कैसे की, आपको कैसे रुझान आया इस दिशा की ओर?
1: देखिए मैम, पहले तो मेरा जो सब्जेक्ट था, मतलब स्कूल टाइम में मेरा था PCM, साइंस बैकग्राउंड से थी मैं, मेरा इंटीरियर से कोई रिलेशन नहीं था। मतलब धीरे धीरे मैंने स्टडी करना स्टार्ट करा तो मेरा इंटरेस्ट बहुत आया, मुझे अच्छा लगने लगा कि नहीं यार, इंटीरियर में भी ये चीजें होती हैं, इसको इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। मतलब मेरे घर में भी, जैसे हम लोग फेस्टिव में जब घर रिनोवेट करते थे तो मैं मेरे फादर की और मदर की बहुत हेल्प करती थी। तो पूरा रिनोवेशन, मतलब 50% घर का काम मैं करती थी वहां पर, इंटीरियर ही करना है। फिर मैंने सोचा कि हम इंटीरियर में कोर्स करें, मैं मार्केट गई, मुझे पता लगा कि इंटीरियर में कोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए एक डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत पड़ती है अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं आगे। तो मैंने फिर इसमें जो स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है डिप्लोमा, वो मैंने 3 साल का जो कोर्स होता है वो मैंने लिया, और मैंने उसमें बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं ये इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ। तो मैंने इसीलिए ये सब्जेक्ट चूज करा कि मुझे आगे इसमें काम भी करना था, और मैं चाह रही हूँ कि काफी सारे, मतलब पूरे इंडिया में या हमारा जो MP इंदौर के जो बच्चे वो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े और हम उनको अच्छे डिजाइनर बनाए, इंडस्ट्री में जाके अच्छे से क्लाइंट्स का काम करें, और वो अपने एक स्किल उनके पास रहेगी तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे इंडस्ट्री में। तो हमारा मेन मोटो यही है, और इसीलिए मैंने इंटीरियर किया है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था।
0: वाकई बहुत मेहनत का काम है, और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी जो पढ़ाई है, जो आपकी लाइन है, उससे हटके आपने अपने रुचि के हिसाब से अपना करियर चुना। और वाकई जहाँ हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हमारी रुचि होती है, वो काम बहुत ही बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। जी, और एक बात और जानना चाहूंगी कि कितना लगभग समय दे पाती हैं आप घर और काम के बीच में, कैसे सामंजस्य कर पाती हैं?
1: मतलब पहले मुझे शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था काम अपना इंटीरियर का, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी कि जैसे घर भी मैनेज करना होता है, देन मेरी साथ में पढ़ाई भी चल रही थी, मेरा PhD चल रहा था, मैंने साथ में इंटीरियर करा, कॉलेज भी जाती थी, फिर मैं इंटीरियर की क्लासेस भी लेती थी, फिर मेरा प्रैक्टिस सेशन होता था, मतलब हमारी 5 घंटे की क्लास होती थी इंटीरियर की, वो भी हम करते थे, फिर उसके बाद 3 घंटे घर पे प्रैक्टिस करते थे, फिर घर में और भी काम रहते हैं वो हम करते थे। तो मतलब कि बहुत हेक्टिक हो जाता था, रात को 3 बजे 4 बजे हम सोते थे, कभी कभी तो पूरी पूरी रात हम नहीं सो पाते थे, पूरी रात जाग के काम करा है हमने
0: जी।
1: तो बहुत मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे चीजें जब ऐसा स्टेबल हुई तो अब मैनेज हो जाता है।
0: तो हम अपनी सखियों से ये कह सकते हैं कि इसके लिए आपको बहुत अलग से कोई समय ऐसा नहीं है कि आपको ये देना पड़ेगा, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर गृहस्थी के साथ भी इस करियर ऑप्शन को चुन सकती हैं।
1: हाँ, और मैंने बताया ना, जैसे आजकल काफी सारी महिलाएं ऐसी रहती हैं कि जो ज्यादा एजुकेट नहीं हो पाती किसी रीजन से, नई स्टडी नहीं कर पा रहे, तो जैसे आपका अगर 10वीं पास है तो भी ये प्रोफेशन में आप एंटर हो सकते हैं, और 2 से 3 साल का जो कोर्स होता है वो आप करके आप, मतलब अपने आप को एज अ डिजाइनर आप रिप्रेजेंट इंडस्ट्री में कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी,
1: और आगे मैम इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है।
0: आप हमें, हमारी सखियों को कुछ ऐसे कोर्स बताएं जो वो कर सकती हूँ।
1: मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे के इस माध्यम से जुड़ने को मिला, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य मैम यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे प्रेरित करें, कि वो कुछ आगे अपना स्किल इम्प्रूव करके आगे काम करे, वो अपने पैरों पे खड़े हो के, राइट। तो हमारा उद्देश्य यही है। और मैं सखियों से यही कहना चाहूंगी कि देखिए, इसके लिए आपको कोई ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर दसवीं किया है तो भी आप इंटीरियर में या फैशन में आ सकते हैं। इसके कोर्सेज वैसे तो 1 साल के भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं, 3 साल के भी होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। अब जैसे कोई महिला है जिसकी शादी हो गई है, जिसके बच्चे हैं और जो टाइम नहीं दे पाती ज्यादा, तो वो 1 साल का भी कोर्स कर सकती है। और सबसे अच्छी बात मैम ये मतलब इसमें आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे की क्लासेस देना है। मतलब जैसे आप अपना घर भी मैनेज कर सकते हैं और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने भी जॉब के साथ में ही किया है तो अच्छे से मैनेज हो जाता है।
0: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारी सखियां घर बैठे ही इस करियर विकल्प को चुन सकती हैं और एक छोटी सी शुरुआत घर से ही कर सकती हैं। तृप्ति जी, बहुत अच्छा।

सखियों, अभी हम सुन रहे थे क्रम मेरी उड़ान तृप्ति कुमायूं के साथ, और अब बात कुछ सजने सवरने की हो जाए सखियों। देखिए ना सखियों, बारिश में अक्सर हमारा मेकअप जल्दी ही चिपचिपा और बेकार दिखने लगता है, तो इससे कैसे बचा जाए आइए जानते हैं आज के क्रम रूपलावण्य में। आज हम बात करेंगे कि बारिश में या मानसून में भी हम अपने मेकअप को कैसे एकदम फ्रेश रख सकते हैं। सखियों, मेकअप से पहले चेहरे पर बर्फ लगाए जिससे फेस पर मेकअप ज्यादा देर तक टिका रहेगा। अब बारी है प्राइमर की, तो आप मॉइस्चराइज प्राइमर चुने और इससे मेकअप उमस में भी फ्रेश लगेगा। लाइट वेट फाउंडेशन चुने, चिपचिपे और हैवी फाउंडेशन पूरी तरह से अवॉइड करें। अब बेस सेट करने के लिए आप उसके ऊपर पाउडर चुन सकते हैं, लेकिन याद रखें सखियों कि ये भी ह्यूमिडिटी प्रूफ होना चाहिए। अब बारी आती है आई मेकअप की, तो आई मेकअप में इस मौसम में बार बार पसीना भी आता है, इसलिए वाटर प्रूफ आई मेकअप चुने। ब्राइट कलर्स के लिपस्टिक प्रयोग करें जो लॉन्ग लास्टिंग और स्मच प्रूफ हूँ। साथ ही साथ मानसून में चिक टिंट का उपयोग करें, ये लाइट वेट ब्राइट होने चाहिए जो लंबे समय तक टिके रहें। आखिर में मेकअप के ऊपर फिक्सर जरूर स्प्रे करें, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं करना है। बस इतने छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे सखियों तो आपका मेकअप लंबे समय तक फ्रेश लगेगा और आप दिखेंगे खूबसूरत।

बारिश का दौर चालू है सखियो और हम सभी तरह तरह के मौसमी जायकों का मजा ले रहे हैं। और हाँ, एक काम हम महिलाएं इस मौसम में जरूर करने लगती हैं, वो होता है अचार बनाने का। जी हाँ, अचार बनाने का। इसलिए आज के फूड जोन में हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट अचार मसाले की रेसिपी की, जिसे आप घर पर ही तैयार कर सकती हैं। आज हम आपको लगभग 200 ग्राम मसाला बनाने की विधि बताने वाले हैं, तो नोट करिए।

ये सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए सरसों 4 चम्मच, मेथी दाना 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, सौंफ 3 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 4 से 5 बड़े चम्मच, स्वादानुसार काला नमक और 1 बड़ा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच आप इसमें हींग ले सकते हैं। सबसे पहले सखियों सरसों, मेथी, जीरा, सौंफ और अजवाइन को हल्का सा भून लें। मसाले जले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। इसके बाद मसालों को दरदरा पीस लें, बहुत बारीक पाउडर भी ना बनाएं। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक और हींग डालकर अच्छी तरह से मिला लें। लीजिए, तैयार हो गया आपका इंस्टेंट अचार मसाला। अब इस मसाले को एयरटाइट जार में भरकर आप 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं सखियो। आप जब भी चाहें आम, नींबू, गाजर, मिर्च किसी का भी झटपट से अचार बनाकर तैयार कर सकती हैं। बस इन्हें बारीक काट लीजिए और मिला दीजिए इस मसाले में और ऊपर से डाल दीजिए 2 से 3 बड़े चम्मच गर्म सरसों का तेल। लीजिए, तैयार हो गया आपका इंस्टेंट अचार मसाले के साथ झटपट अचार भी। चटपटे अचार के बाद अब बारी है बहनों एक प्यारे से गीत की।

और सखियो, अब बात हो जाए कुछ काम की। जी हाँ, काम की बातों में आज बात करेंगे हम बचत की। सखियो, बचत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ पैसे की तस्वीर आ जाती है, पर सच बात ये नहीं है बचत सिर्फ पैसे की ही हो। बचत एक ऐसी सोच है, एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। सखियो, बचत कई तरह की हो सकती है और हर तरह की बचत हमें किसी न किसी रूप में अमीर बनाती ही है। जैसे पैसों की बात करें तो कहते हैं ना सखियों कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम रोज 20 से 50 रुपए जैसी छोटी छोटी बचत भी करते हैं ना सखियों, तो ये हमारी इमरजेंसी में काम आती है। पहले बचत फिर खर्च, ये मंत्र अगर हम अपना लेते हैं ना सखियों, तो बचत तो होना तय है। इसके लिए सखियों, आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या SIP में पैसे रख सकती हैं। अब बात जरूरी बचत यानी समय की बचत की। समय की बचत कहते हैं ना जीवन की बचत। दुनिया का सबसे कीमती धन पैसा नहीं बल्कि समय है। जो गया वो वापस नहीं आता। घंटों फोन

स्क्रॉल करना, बेकार की गपशप, बिना प्लान के काम करना, ये सारा समय की बर्बादी है। इसके लिए एक डायरी बनाएं, फिक्स टाइम टेबल बनाएं, पहले काम फिर आराम इस मंत्र को अपनाएं, फिर देखिए सारे काम आपके खुद ब खुद समय पर हो जाएंगे। इसी तरह संसाधन की बचत, जी हाँ, धरती पर पानी, बिजली, पेड़, ये सब मुफ्त में नहीं है। नल खुला छोड़ देना, लाइट जली छोड़ देना, कागज बर्बाद करना, ये आदतें हमें नहीं बल्कि पूरे देश को गरीब बनाती हैं। इसलिए कोशिश करें और छोटी छोटी बचत करें जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह अगर गुस्से में हम कभी कभी किसी को दो शब्द ज्यादा बोल देते हैं ना, तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लें, इससे क्या होगा, हमारे रिश्तों की बचत। जी हाँ, किसी से अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं या किसी को हम माफ़ कर देते हैं, तो इससे हमारे रिश्ते बच जाते हैं। एक और बचत है जो है असली दौलत, वो है सेहत की बचत। आज अगर हम 30 मिनट वॉक कर लेते हैं तो कल डॉक्टर के चक्कर लगाने से बच जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा तला भुना कम खा लेते हैं ना सखियों, तो कल दवाइयों के खर्च से बच जाएंगे। इसलिए सेहत बची तो सब बचा। याद रखिए सखियों, पैसा बचे तो सुख बचे, समय बचे तो तरक्की बचे, रिश्ते बचे तो चैन बचे, सेहत बचे तो सब बचे। तो शुरुआत आज से ही होगी ना सखियों, लेकिन समय तो नहीं बच रहा है अब आपसे बात करने के लिए। तो सखियों, अब चलने का समय हो रहा है। आपको बता दें, आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार, और अब दें अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है आनंदी लाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुत

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनते हैं पूर्णिमा नतानी द्वारा गाए गीत और भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा नातानी द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। चलिए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज में फिल्म दम लगा के हईशा से।

अनु मलिक का संगीत वरुण ग्रोवर के लिखे बोल, कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दम लगा के हैशा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मनमर्जियां से, आवाज़ है हर्षदीप कौर और जाजम शर्मा।

अमित त्रिवेदी का संगीत शैली के लिखे बोल, हर्षदीप कौर और जाज़िम शर्मा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मरमर्जिया से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने नागरिकों से एकता के साथ आगे बढ़ने और भारतवर्ष के सभी लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद कल वे अनंतपुरम जाएंगी, जहां आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह

आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री गौतम टिटवाल और सांसद रोड बलनागर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री दूध तलैया में गंगा पूजन, गौ पूजन और पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का आज समापन हो रहा है, जिसमें अभियान के तहत 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। जिला स्तरीय समारोहों में सांसद गढ़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डेलिट उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीडी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों को कक्षा के अनुसार 1,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब शिष्यवृत्ति की दरें हर साल मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होंगी और जुलाई में छात्रावास आश्रम शुरू होने से पहले लागू होंगी। नई दरों के अनुसार छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले बालक विद्यार्थियों को 1720 रुपये प्रतिमाह और बालिका विद्यार्थियों को 1710 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जाएगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर के निर्देशन में रोजगार मेले का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में होगा। कटनी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत कल ईवीएम वेयरहाउस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। सेफ क्लिक अभियान के तहत आगरमालवा जिले के कल 6वें दिन जिला पुलिस द्वारा बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में व्यापक साइबर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। शिवपुरी जिले में सहकारिता और जागरूकता तथा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ कल जिला सहकारी संघ कार्यालय में आयोजित हुआ और खंडवा वन मंडल की गुंडी रेंज के ग्राम आमा खुचरी में वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगभग 105 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं और कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरोबैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट।

0: में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1,021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1,021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि

0: और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि

0: ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर, और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का, जिसमें आपके भेजे हुए पत्रों को हम शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के मीठे मीठे गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ, जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में, और यह है फिल्म नागिन से। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से। कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत।

हेमंत कुमार का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नागिन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है विजय पथ और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। इसके अलावा सपना संगीता रोड इंदौर से हमें लिखा है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत।

विजयपथ से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुन रहे थे आप, जिसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने और जिसके बोल लिखे थे जमीर कासमी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रजनीगंधा से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने और इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं MM राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनका पूरा परिवार। और इसके अलावा एक और पत्र हमारे पास आया है जिला नांदेड़ से, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंतले और आरती जोंतले का। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

सलल चौधरी का संगीत, योगेश के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रजनीगंधा से। और ये है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। अगला गीत आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनाएंगे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म परिचय से, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इसके अलावा पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री ने भी हमें फरमाइशी पत्र लिखकर इस गीत की फरमाइश की है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप श्रोताओं के लिए यह अगला।

वैष्णवी, अनरथ रखवार, हल्ले लल्लू और साथ ही ऋषि रैकवार और बंडा की ओर से। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है, वो है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की ओर से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की ओर से। तो लीजिए अगला गीत है आप सभी श्रोताओं के लिए।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म निगाहें से। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी तरह अपने पत्रों का सिलसिला जारी रखिए और हमें भेजते रहें अपने पत्र अपनी फरमाइशों के साथ। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल बंगू भाई पटेल ने की। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीड़ी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा का वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है और प्रदेश में मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिएगा युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के 6वें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी आज शाम 5:33 पर। शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ पर और डीटीएच के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में मीडियम वेव पर प्रसारण आरंभ होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में आयोजित जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जाती विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है और सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस साल 30 जून निर्धारित की गई थी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी द्वारा प्रसारित युवाओं के दिलों की धड़कन और आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शाश्वत विष्णु रावत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और भोपाल की इन बदलती फिजाओं का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। लगता है गर्मियों ने अब खामोशी से विदा लेने की ठान ही ली है और सावन ने भी अपनी आहट ठंडी हवाओं और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू के साथ भेजनी शुरू कर दी है। तो कार्यक्रम में और आगे बढ़ने से पहले आइए इस बदलते मौसम के नाम सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

साथियों, क्या कभी आपने रात के शांत आकाश को निहारते हुए यह सोचा है कि जिन अनगिनत तारों को हम टिमटिमाता हुआ देखते हैं, उनके बीच ऐसे भी पिंड मौजूद हैं जो करोड़ों वर्षों से अंतरिक्ष में अपनी अनवरत यात्रा पर हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। हर वर्ष 30 जून यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी और इस दिन को चुनने का कारण है 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में हुई तुंगुस्का घटना, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह या उसके अवशेष के वायुमंडल में विस्फोट से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र नष्ट हो गया। यह पृथ्वी पर दर्ज सबसे बड़ी क्षुद्र ग्रह घटनाओं में से एक मानी जाती है। अब आपके मन में यह प्रश्न भी आ सकता है कि आखिर क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? सरल शब्दों में कहें तो ये चट्टानों और धातुओं से बने ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा बदलकर पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट भी आ जाते हैं। अधिकांश बिल्कुल सुरक्षित दूरी से गुजरते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इन पर नजर रखते हैं ताकि भविष्य में किसी भी संभावित खतरे का समय रहते आकलन किया जा सके। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने का उद्देश्य डर पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाना है। आज विश्व भर के अंतरिक्ष एजेंसियां आधुनिक दूरबीनों

और उन्नत तकनीकों की सहायता से लाखों क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन कर रही हैं। उनका आकार, उनकी गति, उनकी कक्षा और पृथ्वी से उनकी दूरी, हर पहलू पर लगातार शोध किया जा रहा है। यही शोध भविष्य में हमारी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो अगली बार जब आप रात को खुले आसमान की ओर देखें, तो सिर्फ तारों को ही मत देखिए, उस अनंत ब्रह्मांड की कल्पना भी कीजिए जहाँ हर क्षण कुछ नया घटित हो रहा है और जहाँ मानव की जिज्ञासा ही उसे निरंतर नई खोजों की ओर अग्रसर करती है।

0: अभी आपने मोहित चौहान की मधुर आवाज में जब वी मेट फिल्म का लोकप्रिय गीत तुम से ही सुना। इस गीत के बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम जल संरक्षण जैसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आज केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी बन चुका है। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं वाणी शर्मा द्वारा प्रस्तुत भारतीय शास्त्रीय नृत्य और वैश्विक मंच विषय पर एक रोचक और विचार उत्तेजक वार्ता।
1: नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। जब शब्द नहीं थे, जब भाषा नहीं थी, जब सभ्यताओं के नाम तक नहीं थे, तब भी एक लय थी, एक स्पंदन, एक कंपन, एक दिव्य गति, और उसी गति से जन्मा था सृष्टि का नृत्य। भारतीय चिंतन कहता है कि यह ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह निरंतर गतिमान है। नक्षत्र घूम रहे हैं, ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, श्वास चल रही है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि स्वयं एक नृत्य है। और इस विराट नृत्य के अधिष्ठाता हैं श्री महादेव नटराज जी। कहा जाता है कि जब नटराज जी ने अपने आनंद तांडव की पूर्णता पर डमरू का निनाद किया, तब वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह सृष्टि की प्रथम अभिव्यक्ति थी, जिससे 14 माहेश्वर सूत अ ई ऊं रिलिक ए ऊं ए औच हय वरट लण यम गण नम झभय घड़ धश जब गड़ धश खफ छट थ चट तव कपय शश सर हल प्रकट हुए। विचार कीजिए, जिस संस्कृति ने नृत्य को केवल गति का माध्यम नहीं माना बल्कि उसे ध्वनि, भाषा, व्याकरण और अभिव्यक्ति की उत्पत्ति से जोड़ दिया हो, उस संस्कृति का शास्त्रीय नृत्य स्वाभाविक रूप से सीमाओं में कैसे बंध सकता है। शायद इसी कारण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जन्म किसी रंगमंच पर नहीं हुआ, उसका जन्म चेतना में हुआ। और जो कला चेतना में जन्म लेती है वह भूगोल की सीमाओं में नहीं रहती। इसीलिए आज जब भारत का शास्त्रीय नृत्य वैश्विक मंच पर पहुंचता है तो वह केवल घुंघरुओं की ध्वनि नहीं ले जाता, वह अपने साथ सहस्राब्दियों की सांस्कृतिक स्मृति, दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक दृष्टि भी लेकर जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल शरीर की गति नहीं है, यह नृत्य है जहाँ लय और ताल का शुद्ध सौंदर्य प्रकट होता है। यह नृत्य है जहाँ गति भावनाओं से संवाद करती है। और यह नाट्य है जहाँ संपूर्ण जीवन मंच पर जीवंत हो उठता है। इसीलिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि किसी विदेशी दर्शक को संस्कृत का एक भी शब्द न आता हो, यदि उसने कभी रामायण न पढ़ी हो, यदि वह श्री राधा, कृष्ण, शिव या पार्वती के नामों से भी अपरिचित हो, फिर भी यदि किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति के अंत में उसकी आंखें नम हो जाएं, तो यह केवल कला की सफलता नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की वैश्विक विजय है। गीतेन प्रियते देवो, नृत्येन प्रियते जनः, उभाभ्याम प्रियते लोको, धर्म कामार्थ सिद्धये। गीत से देवता प्रसन्न होते हैं, नृत्य से जनमानस प्रसन्न होते हैं, और दोनों मिलकर संपूर्ण लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं बल्कि लोक मंगल है, और जब कोई कला लोक मंगल से जुड़ जाती है तब वह समय और भूगोल की सीमाओं से परे चली जाती है। यही भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक सफलता का रहस्य है। उसने कभी अपनी जड़ों को त्याग कर विश्व को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। उसने स्वयं को बदल कर नहीं, स्वयं को समझ कर विश्व का सम्मान प्राप्त किया। और यही किसी भी संस्कृति की वास्तविक शक्ति होती है। वैश्वीकरण का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, वैश्वीकरण का अर्थ अपनी पहचान को इतना प्रखर बना देना है कि संपूर्ण विश्व उसे समझना चाहे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य ने विश्व को केवल अपनी कला नहीं दिखाई, उसने विश्व को भारतीय दर्शन का परिचय कराया। उसने बताया कि शरीर भी प्रार्थना कर सकता है, मौन भी बोल सकता है, गति भी ध्यान बन सकती है और नृत्य भी मोक्ष का मार्ग हो सकता है। अंततः भारतीय शास्त्रीय नृत्य किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर मात्र नहीं है, यह मानवता की साझा चेतना की धरोहर है। यह उस सत्य का साक्ष्य है कि मनुष्य केवल तर्क से नहीं जीता, वह सौंदर्य, संवेदना और आध्यात्मिकता से भी जीता है। गंगा के तटों पर विकसित कथक से लेकर तमिल भूमि के भरतनाट्यम तक, उड़ीसा की त्रिभंगीमयी ओडिसी से लेकर आंध्र की कुचिपुड़ी तक, केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम से लेकर मणिपुर के कोमल मणिपुरी तथा असम के

0: आध्यात्मिक सत्रिया तक। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रत्येक धारा अपनी क्षेत्रीय विशिष्टता के साथ एक ही सांस्कृतिक महासागर में प्रवाहित होती है, और वह महासागर है भारतीयता। जब 20वीं शताब्दी में विश्व तेजी से बदल रहा था, औपनिवेशिक दृष्टिकोण भारत को रहस्य और रोमांच की भूमि के रूप में देखता था, परंतु कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्होंने विश्व को बताया कि भारत केवल रहस्य नहीं, एक परिष्कृत सांस्कृतिक सभ्यता है। इन अग्रदूतों में प्रमुख नाम था श्री उदय शंकर जी का, जिन्होंने पश्चिमी मंचों पर भारतीय नृत्य की आत्मा को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय नृत्य संग्रहालय की वस्तु नहीं है, वह जीवित है और वह विश्व से संवाद भी कर सकता है। फिर आईं श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी, जिन्होंने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया। उनके प्रयासों से भारतीय नृत्य विश्वविद्यालयों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सांस्कृतिक विमर्श का विषय बना। इसके बाद श्रीमती यामिनी कृष्णमूर्ति जी, श्रीमती मृणालिनी साराबाई जी, श्री बिरजू महाराज जी, श्रीमती सोनल मानसिंह जी, श्री केलुचरण महापात्र जी जैसे महान कलाकारों ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय नृत्य केवल परंपरा नहीं बल्कि उच्च कोटि की कलात्मक बौद्धिकता है। आज विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भारतीय नृत्य पर शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिक ताल और गणित के संबंध का अध्ययन कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रस सिद्धांत को मानव भावनाओं की गहनतम व्याख्या मान रहे हैं, तथा आध्यात्मिक खोजी नृत्य को ध्यान की एक विधि के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि भारतीय नृत्य में गणित भी है, दर्शन भी है, मनोविज्ञान भी है और आध्यात्मिकता भी है। जब कथक का कलाकार 16 मात्रा के चक्र में घूमता है, जब भरतनाट्यम की रेखाएं ज्यामिति का जीवंत रूप बनती हैं, जब उड़ीसी की त्रिभंगी मानव शरीर को मूर्ति कला में बदल देती है, तब दर्शक केवल नृत्य नहीं देख रहे होते, वह समय, स्थान, शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को देख रहे होते हैं। आनंदादेव खल विमानी भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति भी संविशन्ति। आनंद से ही सब उत्पन्न होते हैं, आनंद से ही जीते हैं और अंततः आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य उसी आनंद की यात्रा है, उसी अनंत लय का स्पर्श है, उसी दिव्य संवाद का माध्यम है जो मानव को मानव से और मानव को परमात्मा से जोड़ता है। आज जब भारतीय शास्त्रीय नृत्य वैश्विक मंच पर अपने चरण रख रहा है, तब वह केवल भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, वह संपूर्ण मानवता को यह स्मरण करा रहा है कि प्रगति और परंपरा विरोधी नहीं है, आधुनिकता और आध्यात्मिकता शत्रु नहीं है, और कला वह पुल है जिस पर चलकर संसार एक दूसरे को समझ सकता है। तो आइए इस अनंत परंपरा को प्रणाम करें, उन गुरुओं को प्रणाम करें जिन्होंने इसे जीवित रखा, उन कलाकारों को प्रणाम करें जो इसे विश्व तक ले गए, और उस दिव्य लय को प्रणाम करें जो युगों से सभी प्राणियों को नचा रही है। यतो हस्तस ततो दृष्टिर, यतो दृष्टिस ततो मनः, यतो मनस ततो भावो, यतो भावस ततो रसः। अर्थात जहाँ हाथ जाते हैं वहीं दृष्टि जाती है, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन एकाग्र होता है, जहाँ मन होता है वहीं पवित्र भाव का जन्म होता है, और जहाँ भाव होता है वहीं रस यानी उस परमानंद की निष्पत्ति होती है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध देती है। रसो वै सह, परम सत्य स्वयं रस है।
1: वाणी शर्मा द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य और वैश्विक मंच विषय पर आपने

सुनी ये वार्ता। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी। दोस्तों, कभी आपने ठहर कर बहुत शांति से जल की एक बूंद को आसमान से गिरते हुए देखा है? वह बूंद जो धीरे धीरे धरती को छूती है और उसी क्षण जीवन की अनगिनत कथाएं अपने भीतर समेट लेती है। आज की इस प्रस्तुति में हम उसी जल की बात करेंगे जो केवल हमारी प्यास का निवारण नहीं बल्कि हमारी समस्त सृष्टि का आधार है। वह जल जो आज के इस तीव्रगामी युग में एक साधारण आवश्यकता से बढ़कर एक अनिवार्य चेतावनी बन चुका है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां विकास की दौड़ ने हमें ऊंचाइयां तो दी हैं पर कहीं ना कहीं हमारी जड़ों से हमारा संबंध शिथिल कर दिया है। हमने आकाश को छूने की इस आकांक्षा में धरती की नमी को शायद अनदेखा कर दिया और शायद यही वह विसंगति है जो आज जल संकट के रूप में हमारे सामने खड़ी है। पृथ्वी पर जल का विस्तार वैसे तो असीम प्रतीत होता है, किंतु जब बात आती है उस जल की जिसे हम पी सकें, जिसे हम अपने जीवन में उतार सकें, तो वह अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। नदियां जो कभी कल कल करती हुई जीवन का गीत गाती थीं, आज अनेक स्थानों पर केवल स्मृतियों में सिमटती जा रही हैं। तालाब जो गांवों की आत्मा हुआ करते थे, अब केवल मानचित्रों में खोजे जाते हैं। और धरती, वह धरती जो अपने भीतर अनंत जल संजोए हुए थी, आज स्वयं प्यास की पीड़ा सहने लगी है। यह केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं है, यह हमारे व्यवहार का प्रतिबिंब है। परंतु अभी भी समय की धारा पूर्णतः विलीन नहीं हुई है। अब भी हमारे हाथों में वह सामर्थ्य है जिससे हम इस प्रवाह को मोड़ सकते हैं। यदि हम चाहें तो हर गिरती हुई बूंद को एक संचित धरोहर बना सकते हैं। यदि हम सचेत हों तो अपने दैनिक जीवन में जल के संयमित उपयोग को एक संस्कार बना सकते हैं। यदि हम संवेदनशील हों तो प्रकृति के साथ एक संतुलित संबंध पुनः स्थापित कर सकते हैं। यह परिवर्तन किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है, यह एक सामूहिक संकल्प है, एक मौन प्रतिज्ञा है जो प्रत्येक युवा के हृदय में, विचारों में और क्रिया में परिलक्षित होना अति आवश्यक है। यदि आज हमने इस सत्य को आत्मसात कर लिया तो आने वाला कल केवल सुरक्षित ही नहीं संवेदनशील और समृद्ध भी होगा। और यदि हम चूक गए तो शायद वह समय भी दूर नहीं जब जल की एक बूंद केवल आवश्यकता नहीं एक विलासिता बन जाएगी। इसीलिए आइए हम इस क्षण को केवल विचार का नहीं संकल्प का क्षण बनाएं, अपने भीतर ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करें कि जल को बचाना दरअसल जीवन को बचाना है, क्योंकि अंततः जल ही जीवन है और जीवन हमारे हाथों में है।

श्रोताओं, अगर आप या आपके परिवार में कोई युवा नौकरी की तलाश में है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद कारगर है। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC द्वारा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, लीगल ऑफिसर सहित अनेक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित पद के अनुसार इंजीनियरिंग, विधि, फार्मेसी, विज्ञान अथवा स्नातक एवं स्नातोत्तर निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 जुलाई 2026 तक UPSC के ऑनलाइन भर्ती पोर्टल ORA के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसी क्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विभिन्न संस्थानों में जूनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट तथा पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संबंधित पदों के लिए BE, BTech, ME, MTech अथवा विज्ञान में स्नातोत्तर योग्यता निर्धारित की गई है। विभिन्न विज्ञापनों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथियां 12 जुलाई, 15 जुलाई एवं 21 जुलाई 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बातों ही बातों में पता नहीं लगा लेकिन आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। आशा करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में आपने कुछ नया सीखा होगा। दिस वॉज योर रेडियो दोस्त शाश्वत विष्णु रावत। सी यू सुन, सुनते रहिए युववाणी।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
3: डीडी डायरेक्ट,
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
4: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी।

0: प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
1: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन
2: पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट।
3: संस्कृत ज्ञान, भारतीय परंपरा और वैदिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आज उज्जैन की पावन धरती एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण की साक्षी बनी। कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल सभागृह में महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने की, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार सहित देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, संत और विद्वान इस अवसर के सहभागी बने। दीक्षांत समारोह में जहां विशिष्ट विद्वानों को मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया, वहीं PhD, स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की गई। प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण एवं रजत पदकों से सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत भाषा और वैदिक मूल्यों के संरक्षण तथा संवर्धन का संदेश इस समारोह ने पूरे शिक्षा जगत को दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा,
4: व्याकरण शास्त्र के प्रणेता, शब्द ब्रह्म के उपासक महर्षि पाणिनि के पावन नाम प्रस्थापित विश्वविद्यालय का दीक्षांत केवल उपाधि वितरण का प्रयास प्रसंग नहीं है, अपितु संस्कृत की सनातन ज्ञान परंपरा के नई पीढ़ी के सौंपने का पवित्र अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के साक्षी पालकों एवं आचार्य और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी ऊर्जावान विद्यार्थियों को हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिस प्रकार महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के 3,959 सूत्रों में पूरी भाषा को नियमबद्ध किया, उसी प्रकार आप सभी स्नातकों भावी जीवन में अपने ज्ञान, अनुशासन और चरित्र के राष्ट्र और समाज के संस्कारित आपको करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और गर्व करने का एक ऐतिहासिक अवसर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संस्कृत को केवल पूजा पाठ कर्मकांड की भाषा नहीं माना, बल्कि इसे विज्ञान, दर्शन, गणित, कला और आधुनिक तकनीक के वाहक के रूप में मान्यता दी है। यह नीति त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से संस्कृति को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक मुख्य धारा में लाने का एक सशक्त रोड मैप प्रस्तुत करती है। अब समय आ गया है कि संस्कृत को संग्रहालयों की प्राचीन लिपियों से बाहर निकलकर आधुनिक अनुसंधान के जीवंत भाषा बनाए। विश्वविद्यालय से अपेक्षा है कि भारतीय ज्ञान की प्रणाली का दुनिया में प्रचार के लिए संस्कृत के ज्ञान विरासत को आधुनिक भाषा में प्रचार करे, मगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी सारे हिंदुस्तान को पार्क मिनिस्टर ऐलान किया है हमारे को 2047 में विकसित भगत जो बनाना है, तो ऐसे पुराने जो हमारे संस्कार है, पुराने जो प्रकृति की जो हम पूजा करने वाले हैं, ऐसा समाज हम तैयार करेंगे तो सही दिशा में हम विश्व गुरु बनेंगे। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, ऐसे अपेक्षा के साथ भारत माता की जय।
3: कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने सभी दीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देने के साथ कहा,
5: आज जिस विश्वविद्यालय की स्थापना, जिस उद्देश्य से, जिस

0: भाव के साथ मैं समझता हूँ की गई थी। इस दीक्षांत समारोह से उसके उद्देश्यों को पूर्ति हुई हम सबको दिखती है। आज जिन भी बंधु भगनी को उपाधि मिली है, मेडल मिले हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन जैसा कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं है, शिक्षा का एक पड़ाव है, लेकिन आगे जो चुनौतियाँ हैं उनको सबको स्वीकार करने की भी आवश्यकता है। हमको अपने देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के उस ज्ञान को, जिस ज्ञान के आधार पर हम दुनिया में कभी विश्वगुरु कहलाते थे, फिर से विश्वगुरु बनने का संकल्प यदि हम सब में है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि निश्चित रूप से भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। और विश्वगुरु बनने के वाहक के रूप में आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सब बनने वाले हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा को हमने विशेष रूप से सभी विषयों के साथ जोड़ करके पाठ्यक्रमों में, सिलेबस में लागू कर दिया है। उस अनुसार पुस्तकें बन चुकी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा यानी भारत के शास्त्रों के बारे में ही केवल पढ़ाने का विषय होगा, ऐसा नहीं है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र ये सारे है जिनमें कई सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं, और इसलिए उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाज के सामने रखना। लेकिन मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में भी क्या भारतीय वैज्ञानिकों का, भारतीय समाज में जो परंपरा है, क्या वो वैज्ञानिक सम्मत है या नहीं है, इस प्रकार का दृष्टिकोण समाज के सामने आज आने लगा है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जब गर्व करने का विषय कभी हमारे सामने आता है तो मैं कई जगह उदाहरण देता हूँ। मैथमेटिक्स में तो दुनिया में सबसे अग्रणी हम ही रहे, और भारत के दर्शन में, सभ्यता में जो भूगोल शब्द का वर्णन होता है, भू यानी पृथ्वी और गोल यानी पृथ्वी गोल है, ये हमारे देश के शब्द है। और इसलिए भारत के विद्यार्थियों के मन में गणित के प्रति जो अथाह विश्वास और का भाव होना चाहिए, वो निश्चित रूप से हमको विश्व विजेता की ओर आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराएगा। ऐसे कई सारे विषय भारतीय समाज में, विज्ञान की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, परंपरा है, पर क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में एक भाव पैदा कर दिया कि आपके पूर्वज तो अंधविश्वासी थे, आपके पूर्वज तो रूढ़िवादी थे, और उस कारण से हमने हमारे अच्छे चीजों को भी, वैज्ञानिक चीजों को भी, विज्ञान के आधार पर समाज में स्थापित की चीजों को भी छोड़ने का क्रम बना लिया, या छोड़ा नहीं तो चुपचाप करने का क्रम बना लिया। मैं एक उदाहरण के साथ आप, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत के समाज में, हमारी सभ्यता में प्रकृति के साथ जो विशेष प्रेम है, स्नेह है, और उसके प्रति हम जो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और दुनिया में जो आज झगड़ा चल रहा है, लोग ईरान अमेरिका जैसे झगड़ा चल रहा है, काय के लिए झगड़ा झगड़ रहे, ऊर्जा के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए, ये भी तेल भी जमीन से जो निकलता है, ये भी कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से ही कन्वर्ट हुआ है, और जो कोयला है वो भी जमीन में है, कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से कन्वर्ट हुआ है। और इसलिए हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, उन्होंने उस वैज्ञानिक पक्ष को हमारे समाज में, मान्यता में, निरंतर परंपरा में उसको आगे बढ़ाया है। और इसलिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमारे सामने, देश के सामने भी है, मैं इस विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब 2047 यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, समाज में कई सारे लोग जिसको विश्वगुरु के रूप में देखना चाहते हैं, वो विकसित गुरु भारत, विश्वगुरु भारत जब बनेगा, तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे सूर्य की ताकत पर, हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान के ताकत पर, भारत दुनिया में ऊर्जा का केंद्र बनेगा। और केवल हमारे देश की ऊर्जा की पूर्ति करने वाला देश नहीं होगा, हम दुनिया के भी कई देशों की ऊर्जा की पूर्ति कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा बड़ा पक्ष होने वाला है कि 2047 का भारत दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत बनेगा, क्योंकि इस देश के किसान अपनी भारत माता से, अपनी वसुंधरा से जो अनाज उत्पादित करेंगे, वो केवल भारत के लिए नहीं होगा, वो दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत होगा, क्योंकि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को स्वीकार किया है। जयतु भारतम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
1: कार्यक्रम में माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर व्यास ने अतिथियों के स्वागत में कहा,
2: मित्रों, महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित हुआ। इस विश्वविद्यालय की एक इस यात्रा में, इस विश्वविद्यालय को विगत पर्याय में NAAC के द्वारा A ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसी सत्र में अभी

0: 8 जून को अभी इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 12B का परीक्षण इस विश्वविद्यालय का संपन्न हो गया है। हमारे इस विश्वविद्यालय के 12B होने के बाद जो हमारी संभावनाएं बढ़ी हैं वो ये है कि हमें ODL संचालित करना है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा हो सके। और जो बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 14 विद्याएं और चतुष्षष्ठी कलाएं, इनका स्वरूप आना चाहिए समाज के सामने। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय इन दिशाओं में बहुत सार्थक प्रयास करेगा और निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। पुनः एक बार माननीय कुलाधिपति जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, दोनों सांसद सदस्यों का, माननीय सारस्वत अतिथि वरखेड़ी जी का और मानद उपाधि पाने वाले पांडे जी का तथा मंच पर विराजमान समस्त कार्य परिषद सदस्यों का, संकाय अध्यक्षों का, विद्या परिषद सदस्यों का, साधारण परिषद सदस्यों का, समागत समस्त अतिथियों का भूयो भूया स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम इति उक्त्वा विरमामि, धन्यवादः।
1: कार्यक्रम के माननीय सारस्वत अतिथि प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने कहा,
2: माननीय कुलपति महोदय तथा सभी साधारण सभा और विशिष्ट सभा और प्रशासन मंडल के सभी सदस्यों को मैं अभिनंदन करता हूँ। इसलिए मैं छात्रों से निवेदन करता हूँ, आज दीक्षांत हो गया, हमारा पूर्ण उपाधि प्राप्त हो गई, लेकिन पूर्ण उपाधि का वास्तविक अर्थ समाज देगा, क्योंकि आज केवल हमने प्रमाण पत्र दिया है। यहाँ के माननीय कुलाधिपति ने अपने अधिकार से विश्वविद्यालय की ओर से आप सबको एक उपाधि प्रमाण पत्र दिया है। हम सबको जानकारी है उपाधि पत्र के प्रथम पृष्ठ में उपाधि का नाम होता है, हमारा ग्रेडिंग होता है, लेकिन उपाधि के पृष्ठ में खाली पत्र होता है, रिक्त पत्रे समाज लिखति, प्रमाण पत्रे कुलपति हस्तांकनं करोति, परंतु रिक्ते प्रमाण पत्रे रिक्त स्थाने समाज रिक्त स्थानम पूरयिष्यति, उस रिक्त स्थान में ये इस उपाधि के लिए अर्ह है, ये उपाधि के लिए प्राप्त है, उपाधि के लिए पात्र है, और उपाधि प्राप्त होने के बाद यह वास्तविक रूप से समाज के लिए उपकारी है, ऐसे समाज जब निर्णय करेगा तभी सब प्रमाण पत्र का पूर्णता प्राप्त होगी। आप सबसे उपाधि धारक स्नातक धारकों को मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, इस दीक्षांत समारोह के बाद पश्चात निरंतर शिक्षा का आरंभ हो जाए और वास्तविक रूप से समाज से आप प्रमाण पत्र स्वीकार करिए। हमारा धर्म होगा केवल हम शिक्षा से विभूषित नहीं है, यदि हमारे मन में केवल सनातन धर्म के लिए निष्ठा नहीं है, अध्यात्म भक्ति नहीं है, संस्कृति का हमारे गंध नहीं है, और शास्त्र और कवित्व प्रतिभा के साथ यदि समस्त विद्याओं के प्रति हमारे धारणा नहीं है, तो हम वास्तविक रूप से उपाधिधारी नहीं हैं। इसलिए आज इस उपाधि के साथ अध्यात्मनिष्ठा, सनातन धर्मनिष्ठा, कवित्व शास्त्र प्रतिभा, संस्कृति और समस्त विद्या का प्रतीक के रूप में हमारी पूजा होती है, इसलिए इन सारे विद्याओं का धारक के रूप में हमारा दायित्व भी है। मेरा दायित्व है, मेरे भारत का धारक हूँ मैं, तो भारत का धारणा शक्ति मेरे मुझ में है, इसलिए इस भावना के साथ हम सबको कार्य करना है। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा केवल शास्त्र स्मृति से काम नहीं चलेगी, शास्त्र रक्षा भी होनी चाहिए और शास्त्र कृषि भी होनी चाहिए, शास्त्र का अनुभूति भी होनी चाहिए और शास्त्र दृष्टि के साथ अभिनव शास्त्र सृष्टि भी होनी चाहिए। सभी को, छात्रों को यही आदर्श के साथ आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों से मैं वचन समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, प्रणामः।
1: दीक्षांत समारोह में स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज को महामहोपाध्याय डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी शोधार्थियों से कहा,
3: भगवान महाकाल की कृपा है, भगवान विश्वनाथ की कृपा है कि हम लोगों ने एक युग देखा जब 370 धारा हट गई, हम लोगों ने यह देखा भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, हमने ये देखा कि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनः उद्घोष हमारी शिक्षा पद्धति में आरंभ हुआ। यह मंच आपको कह रहा है निमित्त मात्र बन जाओ, उठ करके खड़े हो जाओ, भविष्य काल हमारा है, हम उसको करके दिखाएंगे। कितना भी चुनौती भरा समय होगा तो भी क्या, यह उथल पुथल उत्ताल लहर, यह उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी, भारत माता की।
1: ज्ञान संस्कार और परंपरा के संगम बने इस दीक्षांत समारोह ने विद्यार्थियों को नई उड़ान और नई जिम्मेदारियों का संदेश दिया है। उपाधियों और सम्मान के साथ आज इन विद्यार्थियों ने समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का

0: संकल्प भी लिया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस विशेष प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के छठवें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुति थी और इसका प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से

फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आवाज़ें सोनू निगम और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर की बोल हैं और संगीत जतिन ललित का।

लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म दिल धड़कने दो से। यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और साथियों की आवाज़ है, बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत से सजाया है शंकर एहसान रॉय ने।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

0: तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
4: डीडी डायरेक्ट,
3: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
4: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
3: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
4: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
3: आज ही करें कनेक्ट
4: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242।

हम अपने श्रोताओं को बता दें कि गठिया रोग और अर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को एक न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस के अवसर पर विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष करने वाले सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानू

0: सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थलसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल सेठ को सौंपी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में आयोजित जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। और 2026 फीफा विश्व कप के पहले दौर के 32 मैचों के बाद 3 और टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। मोरक्को, ब्राजील और पैराग्वे ने क्रमशः नीदरलैंड, जापान, जर्मनी पर जीत हासिल करके राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बजने वाले हैं। आप सुनिए कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

0: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, लता मंगेशकर और उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। संगीत है उत्तम सिंह का, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: गीतकार गुलशन बावरा का लिखा गीत सुनिए आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और साथियों की आवाजों में। धुन है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है पुकार।

कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया। फिल्म का नाम है हमराज़।

जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। ये अदाएं तेरी कर गई मुझे दीवाना, दीवाना, दीवाना, दीवाना, दीवाना, दीवाना। दिल

विविध भारती, लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिए संगीत सरिता, और शाम 7 कार्यक्रम होगा जय माला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 हवा महल में आज सुनिए नाटिका उनके महबूब, लेखिका है विमला रैना, निर्देशन किया है लोचन बख्शी ने। रात 9 कार्यक्रम होगा आपके लिए, और 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है संगीतकार कल्याण जी पर। रात 10 छाया गीत में आज सुनिए ममता सिंह को। कल सुबह 6:05 पर वंदन वार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का भाग सुनिए 236। संगीत सरिता इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका श्रृंखला का पहला भाग, कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार, संपादन सहायक झरना सोलंकी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम शाम 6:45 पर दोबारा सुना जा सकता है। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार की। तिरवणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दोपहर 2, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 और रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। कल सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार, कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार सी अर्जुन पर, आलेख और स्वर है अशोक सोनावने का, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। कल दिन में 10 पिटारा के अंतर्गत सुनिए सेलोलाइट के सितारे में गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से की गई ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहायक काजल भदरंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 11 मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सुनिए रंग तरंग, और 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की तरह कल भी 1 हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर, कार्यक्रम होगा सुरीला सफर।

2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे। कल दोपहर 3 बजे सखियों का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के विषय हैं पारिवारिक चिकित्सक, साड़ियों का संसार, शब्द हमारे विचार आपके और व्यंजन प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए आज के मेहमान में वरिष्ठ साहित्यकार हरिशंकर राठी से की गई मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल शाम 7 बजे कार्यक्रम जयमाला और शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे राग अनुराग। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी दिव्य स्वप्न। लेखक हैं मनसुख देसाई, निर्देशक हैं सत्येंद्र शरत। रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 बजे छाया गीत में सुनिए मंदाकिनी जोशी को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह व शाम 6 बजे, मध्यान्ह 12 बजे, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। कल सुबह और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम संध्या रंजन में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में। गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन का लिखा गीत, फिल्म का नाम है गीत।

0: संगीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि वो दुर्लभ हैं और अमूल्य हैं। आइए आज सुनते हैं किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत।
2: डॉक्टर गंगूबाई हनगल जी नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: सुना है कि आपकी माता जी कर्नाटक संगीत पद्धति की विदुषी थी, फिर भी आपको हिंदुस्तानी संगीत के प्रति कैसी प्रेरणा मिली?
3: उस वक्त ऐसे है, ज्यादा हिंदुस्तानी सुनने को मिलता था। मेरे माए कर्नाटक गाती थी, हम किसी को नहीं सुना उस वक्त।
2: अच्छा।
3: इसलिए जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे, वो हम सुन के थोड़ा थोड़ा वो गाने लगे
2: हिंदुस्तानी
3: संगीत।
2: अच्छा।
3: उस वक्त झोरा भाई, जानकी भाई और पैरा साहेब, ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे, मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए
2: हिंदुस्तानी संगीत
3: संगीत सिखाएंगे।
2: अच्छा।
3: बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे उस हुबली ले गए, वहाँ उलगुर कृष्णाचार्य करके संगीत विद्वान हुए, अब्दुल करीम खान के शागिर्द थे।
2: अच्छा।
3: उसके पास एक साल तक हमने
2: शिक्षा
3: पी। वो एक साल में मुझे ऐसा लगता है 50 धृत लय की वो चीजा में बंदिश हमको बताए।
2: अच्छा।
3: मेरे आवाज पतला बहुत था।
2: अच्छा।
3: वो तो तीन तीन मिनट में एक एक बंदिश में दो दो ताने ऐसे कुछ वो बताए थे।
2: अच्छा।
3: हम ऐसे छोटा मोटा, कहीं हमारे माँ का प्रोग्राम हम बीच में हुए, मैं भी गाती थी,
2: स्वर लगाती थी।
3: अच्छा। नहीं अलग से, क्योंकि मेरे माँ ने थोड़े बहुत शुरू में जो मुझे सिखाए स्वर के ज्ञान उनसे ही हो गया मेरे माँ से।
2: अच्छा।
3: वो सुबह सुबह, उस वक्त मुझे बहुत छोटी थी उम्र में, 9-10 साल की, 5 बजे मुझे उठाती थी।
2: अच्छा।
3: वो कर्नाटक स्वर तो कर्नाटक हिंदुस्तानी तो अलग नहीं है,
2: बिल्कुल सही
3: बात। इसलिए स्वर का साधना मेरे माँ से मिल गया।
2: अच्छा।
3: वो ये उनकी पद्धति से मुझे रोज वो 1-1.5 घंटा
2: सूर्यास्त
3: करवाती थी। बाद में बीच में थोड़ा कुछ वजह से बंद हुआ, बाद में सवाई गंधर्व के पास थोड़े से बड़ी हुई थी, उस वक्त से हमने
2: उच्च शिक्षा
3: प्राप्त हो पाई।
2: डॉक्टर गंगूबाई जी, आप तो किराने घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं, क्या आप किराना घराने के विशेषता के बारे में कुछ बताएंगे?
3: किराने घराने ऐसे हैं, स्वर अच्छी तरह से लगाना, बाकी का बेसुर गाते ऐसे नहीं
2: है, बिल्कुल। हाँ,
3: ये स्वर में ज्यादा ध्यान रखे हैं, इसलिए वो तो ऐसे बहुत

0: तंतुवाधिकार थे इनके पूर्वज ऐसे कैसे भी वो ज्यादा स्वर का ध्यान रखते, स्वर के ज्यादा महत्व देके स्वर एकदम आ करके नहीं लगाएंगे, उसको गोल ऐसे आ ऐसे करके लगा के एकदम स्वर में गाड़ना बोलते हैं, क्या बोलते मुझे याद नहीं,
1: मग्न हो जाना,
0: हाँ, हाँ, जाना ऐसे गाने का हमारे किराने घराने की पद्धति है।
1: क्या आप गुरु की पद्धति में विश्वास रखते हैं?
0: हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं सभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में संगीत है, फिर वो अच्छे हैं क्योंकि प्रचार के लिए, गायक बनना हो तो गुरुकुल पद्धति चाहिए, नहीं तो उनके लिए क्या होता है, किस घराने से जाना, किसके पास सीखना, ये कुछ मालूम हो जाता है उनको।
1: अच्छा,
0: हाँ, गायक बनने के लिए गुरु पद्धति, मैंने तो शिक्षा पाई है, मुझे उस विश्वास उसी में है।
1: अच्छा, आप नए छात्रों के लिए क्या देने के, कैसे रियाज करना चाहिए और रागों की बढ़त कैसे करनी चाहिए?
0: वो तो किसी का आवाज पतला रहते हैं, किसी का बुद्धि अच्छा रहता है, आवाज नहीं रहती, वो गुरु ने बताना चाहिए किस पद्धति से वो
1: रियाज
0: करना। हमको तो हमारे गुरु जी ने एक एक स्वर का सुबह बैठने से तोड़ी शाम में मुल्तानी ऐसे हमको रियाज करने के लिए मुझे बताए थे, ऐसे एक एक स्वर षड्ज नीचे जितने जाता है खर्च पे उतने एक एक स्वर सांस जब तक है उस तक एक एक स्वर
1: कहना चाहिए
0: और बाद में उसका ताने के तरफ एक एक श्वास में कितनी दफे ताने आते हैं। सा नी दा पा दा नी सा ये जो है श्वास बड़ा तेजी इतनी 6 दफे 7 दफे कितने आते हैं इतने ऐसे हमको बताए थे। और विस्तार करने में 3 स्वर सारेगा गारेगा इतनी उनके अलग अलग
1: ढंग
0: होता है। बाद में गांधार के बाद मध्यम, मध्यम के बाद ऐसे जितने हमारे बुद्धि काम करेगा करना गाना ये हमको सिखाए उसमें रास्ता ठीक बताना ये गुरु का काम है।
1: तो आप कहते हैं कि संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटी हो या संगीत के महाविद्यालय हो वहाँ संगीत की शिक्षा इनके वहाँ से कोई संगीतकार नहीं
0: बन पाता? बहुत कम, हमने तो देखे ही नहीं ऐसे, क्योंकि क्या होता है स्कूल से वो थोड़ा बहुत संगीत हो तो हो जाता है और एकदम कॉलेज में आना, कॉलेज में जब आते हैं 16 वर्ष तो हो जाते हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं संगीत शुरुआत होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है स्कूल से, आजकल हम देखते हैं स्कूल में प्रार्थना का अगर दूसरे कोई उनको पता नहीं, साल में एक गायक उसमें से निकलते हैं, बहुत कुछ होगा।
1: हाँ, तो आजकल आपको किस तरह के श्रोता मिलते हैं, यानी कि शास्त्रीय संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले या
0: वो? हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता, हम जो गाते वही सुनने वाले ही हमको मिलते हैं।
1: अच्छा,
0: आजकल उनको पता है गंगूबाई दूसरे कोई कुछ नहीं गाएगी, वो जो सुनने वाले वही आते हैं, मुझे कोई फरमाइश नहीं करते।
1: अच्छा,
0: शुरू बचपन में सब कुछ गाती थी हम, मराठी गजल ठुमरी हमने, मुझे बाद में ऐसे लगा इसमें करने का मुझे फुर्सत नहीं मिलते।
1: अच्छा,
0: ये मुझे मेरा ये है वो।
1: अच्छा,
0: इसलिए यही गाते चले आए हमने।
1: छात्रों के लिए आपका क्या आदेश है?
0: श्रद्धा भक्ति से जो गुरु बताते हैं एक करना, फिर विश्वास से।
1: अच्छा, आप इतने राग गाती हैं, उनमें से आपको अत्यंत प्रिय कौन सा राग है?
0: कभी कभी एक एक राग जम जाता है, ज्यादा से ज्यादा से करुणा रस सुबह का राग मुझे ज्यादा मुझे गाने के अच्छा लगता है। वो प्रोग्राम में तो सभी राग एक एक दफे हमको ऐसा लगता है ये राग मुझे इतनी नहीं, फिर वही जम जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ज्यादा से कोमल स्वर का मुझे पसंद।
1: क्या आप एक उनकी झलक दिखाएंगे किसी एक राग में?
0: अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं कोमल रेखा वसावली।

विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हंगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत। आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र पर रिकॉर्ड की गई ये बातचीत वर्ष 1990 में विविध भारती के संगीत चर्चा कार्यक्रम में प्रसारित हुई। इसकी प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। वर्ष 1913 में जन्मी गंगूबाई हंगल जीवन भर संगीत की साधना करती रही। वैसी कठोर साधना, अथक परिश्रम और कड़े रियाज ने उन्हें गिने चुने शीर्षस्थ कलाकारों की पंक्ति में स्थान दिलाया। उनके अद्भुत कंठ से निकलकर स्वरों का जो आविष्कार होता था उसका कोई सानी नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है। वर्ष 2009 में वे असीम में विलीन हो गईं, परंतु उनकी आवाज हम सुन सकते हैं, जैसे उनसे की गई ये बातचीत अभी हमने सुनी। इसी तरह आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ राग चंद्रकौंस। तीन ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं, कब घर आओ।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णामूर्ति और साथियों की आवाजों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 352 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और उज्जैन में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 63 विद्यार्थियों को मिले पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर सिधो, कान्हू, चंद भैरव और पुलोझानो सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हूल दिवस आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और बलिदान का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष देशवासियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 जुलाई को भारत आ रही है। ताकाइची 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को समावेशी समाज निर्माण का साधन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षित युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना चाहिए और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर भी बल दिया।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भैंसवा माता मंदिर परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित किया। डॉ. यादव ने कहा कि 19 मार्च से 30 जून तक चले इस अभियान में प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार किया गया है।
2: जलगंगा अभियान 10 संभाग में 55 जिलों में सभी विधानसभा, सभी तहसील, सभी पंचायत में एक साथ हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इस प्रकार की योजनाओं से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से ये हमारा पूरा कार्यक्रम आज समापन पे इस अभियान का एक चरण हो रहा है। अगला चरण भी हम चालू करेंगे।
0: इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं।
2: सिंहस्थ में जब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और 40 करोड़ लोगों के लिए हम अगर प्रबंधन कर रहे हैं और वो प्रबंधन भी मास्टर प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, मास्टर प्लान भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय जो बनाया गया है उनका प्रबंधन भी वैसे करने वाले हैं। विश्व के लिए सबसे बड़ा मेला अगर कोई है, ये देश का और देश से बढ़कर विदेश से लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है।
0: जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थल सेना के नए प्रमुख का पदभार

0: संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल सेठ को सौंपी। जनरल सेठ इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और 28 साल बाद आर्म्ड कोर से सेना प्रमुख बने हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन में लोकमाता अहिल्याबाई राजपुनस्थान की संकल्पना पुस्तक का विमोचन किया। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस शोध संकलन में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, प्रशासनिक दक्षता और समाजोत्थान से जुड़े 19 अध्याय शामिल हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद दिलीप उपाधि से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बावड़िया कला से आशिमा मॉल तक प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी माह निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। मंत्री ने पिपलानी खजूरी रोड में देरी पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश दिए। प्रदेश ने एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों के लिए GI टैग हासिल किया है। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में GI टैग मिले हैं, जिसमें गुना का धनिया, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, जबलपुर का मटर और सिंघाड़ा, बुरहानपुर का केला और छतरपुर का पान शामिल है। इसके अलावा 7 और फसलों के लिए GI टैग का प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल में नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी 2 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यशाला में DPR तैयार करते समय प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि PM सूर्यघर योजना के तहत अब तक 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनके बैंक खातों में करीब 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जमा कराई गई है। श्री तोमर ने बताया कि 1 किलोवाट संयंत्र पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या अधिक पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। त्रिशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सास गिरबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। CBI ने अदालत से सॉफ्ट लैपटॉप का पासवर्ड दिलाने और दोनों आरोपितों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं गिरबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशा विरोधी अभियान के तहत गोविंदपुरा क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलनी को टीम में शामिल किया गया है, जबकि प्रीमा राउत को बाहर रखा गया है। आपको समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर के मूसाखेड़े स्थित कबीर मंदिर में श्री सतगुरु कबीर साहब का 629वां प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में चौका आरती और भजन संध्या हुई, जिसमें विधायक महेंद्र हड्डिया सहित बड़ी संख्या में कोली समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन लालचंद सोमेश ने किया। खंडवा में जलगंगा संवर्धन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह आज किशोर कुमार सभागार में आयोजित किया गया। वहीं शिवपुर कलेक्टर के मार्गदर्शन में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज ग्राम पंचायत मठेपुरा स्थित बावड़ी पर आयोजित हुआ। झाबुआ में ग्राम पंचायत जुलवानिया बड़ा जनपद थांदला में 14वें वित्त आयोग के 2 निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्रवाई की गई है। देवास में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला

मास्टर वॉलेंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदसौर में जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर ने 83 आवेदकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। वहीं नीमच कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में बीते 4 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल सुनने बारे सभी भैया बहन खां चंदा बहन की राम राम। भैया देखो जल ही जीवन है, जे अपन सभी जानत हैं। सो भैया देखो जल होगो तभी कल होगो। और आज अपन देख रहे हैं कि पानी की कितनी दिक्कत होते है, खास करके हम किसान भैया के लाने तो देखो जाको महत्व और जाकी जो जरूरत है वो और भी ज़्यादा है। अपन देख रहे धरती को जल स्तर जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जा रहा है, मौसम सो अनिश्चित हो गया है। अब जब गर्मियों के दिन अपन देखते हैं तो बिन दिन हमने तो स्थिति और भी गंभीर हो जाते हैं। लोगन का जे पीवे तक के पानी के लाने कई बेर दूर दूर तक भैया फिरना पड़त है। सो आज की महती आवश्यकता है जल को संरक्षण करना और जल को संवर्धन करना। देखो जल अगर व्यर्थ बहेगो या अपन जागरूक नहीं भय तो आवे वाले टाइम में पानी की कमी एक महासंकट बन जागो। और भैया सच्ची कहें तो आज जो अपन जल संकट से जूझ रहे वो अपन ही भूलों और लापरवाहियों से युक्त जो भाव है, यानी कि हम अनावश्यक रूप से भैया बहुत ज़्यादा मात्रा में जल को दोहन कर रहे हैं। दैनिक उपयोग की अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि दैनिक उपयोग में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल को अपव्यय करने की आदत ने जल संकट का जे बढ़ा दो है। और जाके अलावा बढ़ती जो जनसंख्या है जाके कारण सोई जल को उपयोग बढ़त जा रहा है। देखो अपनी खेती और उद्योगों में सोई अधिक उत्पादन लेवे के लाने जल को उपयोग बढ़ो है। जाके अलावा जो अपने वृक्ष हैं बिनकी अंधाधुंध कटाई से वनों के लगातार घटवे से सोई वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है। जल स्रोत भी मूलक कारण से भैया प्रदूषित हो रहे, यहाँ तक कि पीवे तक के पानी को संकट हो जाते। कुल मिला के आज की आवश्यकता है कि अपन सब मिलके जन भागीदारी से जल को संरक्षण करें, जल को संवर्धन करें। वैसे भी जैसे हमने कही कि कहीं ना कहीं आज स्थिति के लाने अपन सब मानवीय जिम्मेवार है, यानी जो सब कछु अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के कारण ही भाव है। सो जब अपने कारण भाव है निराकरण भी मानव ही कर सकते, सही है कि नहीं भैया?

तो देखो आज गांव-गांव शहर-शहर में बने जल स्रोतों को पुनरुद्धार करना जरूरी है। शासन तो देखो अपने स्तर पे प्रयास करत है, तरह तरह की योजनाएं नियम कानून बनाऊत है, पर जब तक अपन सब मिलके सहयोग नहीं करेंगे बात बिल्कुल नहीं बनेगी। सो गली मोहल्ला गांव हर जगह जितने भी जल स्रोत है बिन्ने साफ सुथरो करो। बारिश में भी देखो खेत को पानी खेत में, गांव को पानी गांव में रहे, बाकी व्यवस्था करो। हम तो ये कहते हैं बारिश के पहले ही अपन ने सब कछु काम अपने करके रखने चाहिए, मेड़बंदी करना चाहिए। और भैया देखो जाके अलावा पानी रोकवे के लाने अपन सोखता गड्ढा बनाओ, छतन को पानी जी में जाए। और पानी की सब में बड़ी बात है कि बेवजह की बर्बादी अपन नहीं करें। कई बार का होता है कि आवश्यकता है तब तो अपन खर्च करते ही हैं, संगे संगे कई बार बामे अपन देख रहे हैं कि जौन भैयन के पास में पानी अच्छो है वो भाई मुलक बगरा रहो। तो अपन ये ध्यान रखना चाहिए कि आज है तो अपन वहाँ को अपव्यय कर रहे हैं, पर जब नहीं होगा तो अपन एक एक बूंद के लाने तरसते हैं। तो जब आद के लाने हर एक और एक आजी समझना चाहिए भी, मतलब गाड़ियाँ धोव लगते हैं तो या भैया का होते कहूँ कहूँ तो नलन में टोटी ही नहीं लगात, या नल ही खुलो डाल दो, छोटे मोटे काम है पूरा पूरा नल चला के अपनो बस पानी बह रहो है अपन कछु काम कर रहे हैं। तो अपन ने जिन सब अपनी आदतन के लाने बदलना चाहिए और समझना चाहिए कि पानी को इतने महत्व है। ऐसे भैया खेती बाड़ी में भी फव्वारा और टपक सिंचाई जैसे तरीका अपनाना चाहिए, जैसे काय होएगो पानी की बचत होगी। यानी कहवे को मतलब मौजी है कि अपन ने हर वो काम करना है जिसे पर्यावरण का जो लाभ हो, जल को संरक्षण हो। अब जैसे घर में पानी होता है तो पानी के लाने अपन ने जैसे अपन ने कपड़ा धोए बाकी पानी से अपन ने गाय को या अपने जानवर को गोठा धो लियो, या अपन किचन को जो पानी होता है अपने रसोई घर में जो अपन दाल सब्जी धोते हैं बाको पानी अपन पौधन में डाल सकते हैं। तो खेती बाड़ी वाले लोग हों या अपने आमजन हों, अपन हर एक को जिम्मेवारी है कि अपन इसको भैया पानी की बचत करें। और ये तो ये समझ लो कि ऐसा है कि हर आदमी अपने स्तर पे अपने तरीका से कर सकते हैं, बस इच्छा शक्ति वाले होना चाहिए, यानी कि वो जाके महत्व के लाने समझे, जाके जरूरत के लाने समझे। और भैया यानी अपन ने का करने हर वो काम करो जैसे पर्यावरण को लाभ हो, जल को संवर्धन हुए संरक्षण हुए, और जाके लाने सबको हाथ बढ़ाना है प्रयास करना है। हम उम्मीद करते हैं जहाँ पे आप जरूर जरूर ध्यान दे हो, कैसे कि जब जल नहीं होगो तो भैया अपो कल भी नहीं होगा, जहाँ अपन ने हमेशा ध्यान रखने हैं। और देखो भैया अपन ने स्वस्थ रह वो है तो जी तो हर एक और चाहते हैं, काय नहीं चाहते, सब चाहते हैं कि स्वस्थ रहे। कैसे कि पहले जो सुख होते वो तो होते ही निरोगी काया है। और स्वस्थ रहने के लाने सब में जरूरी, जैसे हमें बात करी थी कि अपो साफ सफाई की, तो साफ सफाई भैया सब में ज्यादा जरूरी होते। देखो भैया साफ सफाई स्वच्छता चाहे पे आसपास की हो या पे शरीर की हो, पानी की हो, भोजन की हो, स्वस्थ रहने की पहली आवश्यकता होते है। आपने भैया स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी जरूर सुनो होएगो, जाके द्वारा हर भारतीय का जो साफ सफाई से रहने को संदेश दऊगा है। और जाको मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरा देश साफ सुथरा रहे, हर नागरिक स्वस्थ रहे। जाके लाने सब में जरूरी है शौचालयों को प्रयोग करना। भैया आज सो ऐसे मुलक गांव है जितने लोग खुले में शौच के लाने जाते हैं, तो भैया जो देखते हैं अपन कि हर तरह से नुकसान को है, जैसे गंदगी बीमारी महामारी तो फैलता ही है। जैसे भैया जो गांव गांव और घर घर में जो बीमारी होबे से बहुत ही भैया सबन के लाने नुकसान पहुँचते हैं। सो जरूरी का है कि गाँव गाँव और घर घर में शौचालय को निर्माण होना चाहिए। और हाँ भैया ना केवल शौचालय को इस्तेमाल करें बल्कि बीते भी साफ सफाई को ध्यान रखने हैं, स्वच्छ शौचालयों को प्रयोग करने हैं। अपने स्वास्थ्य के लाने ये बात बहुत जरूरी है। भैया देखो शौचालय कार्य बनावे को प्रयोग करने को मुख्य उद्देश्य यही है कि इंसानों के मन से जानवरों के संपर्क में आके फैलने वाली बीमारियों पर रोक लगाना, पर्यावरण कार्य दूषित होने से बचाना। और देखो अच्छे शौचालय बनाते टाइम जो सुनिश्चित करना चाहिए कि शौचालय को मल मिट्टी में जाके वायु प्रदूषित ना करें, जाके अलावा शौचालय को मल अपने भूजल का जो प्रदूषित ना करे जा भी ध्यान रखने है, संगे जानवरन की जो पहुंच से दूर होए। कुल मिला के शौचालय अपन ऐसे बनाने हैं कि जे हर तरह से पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे होए। और भैया देखो केवल बनावे से काम तब तक नहीं चलेगा जब तक अपन बाप को इस्तेमाल सही तरीका से नहीं करेंगे, स्वच्छता के संगे नहीं करेंगे। तो बाकी लान देखो अपन शौचालय का जो स्वच्छ रखनो

अपनी जिम्मेवारी है। शौच के बाद अच्छी तरह पानी से को प्रयोग करें, खूब पानी भीतर डालें और शौचालय की नियमित साफ सफाई होते रहना भी जरूरी है। शौच के बाद अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। तो भैया जैसे कहा होता है, जैसे अपने जो कीटाणु होते हैं सब मर जाते हैं और आप अपन स्वस्थ रहते हैं। और जहाँ सबकी जो आदतें होते हैं, तो जो अपन खुद तो राखो, ये संगे संगे अपने बच्चा है इनके लाने तो अपन ही सिखाओ थे, तो बच्चन के लाने भी साफ सफाई की आदत सिखाओ। शौचालय में को प्रयोग भी कैसे करें, बीते जाए तो कैसे साफ सफाई रखें, सब इनके लाने समझा। उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा स्वच्छ शौचालय को प्रयोग करेंगे, बीते भी अपन साफ सफाई के महत्व के लाने जरूर समझेंगे। और हम भैया देखो जय के सांगे लेते हैं कार्यक्रम चौपाल से ही विदा, और आप और उनसे मिलते हैं काम कार्यक्रम किसान वाणी में। आप सबन के लाने चंदा बहन की राम राम, जय जवान

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा
1: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सगे भैया बहन का, मंगलू भैया की और
4: चंदा बहन की, राम राम।
5: किसान भैया रो, देखो अपन देख रहे हैं कि इस समय जो है आवे बारो है, बिल्कुल खरीफ फसल को समय। अब इस समय में अपन जब भी देख रहे हैं कि किसान भैया ने अपने खेतन की बढ़िया जुताई कर रही है, और कछु भैया ने तो जैसे जेठ डोंगरे पर गए उम्र मतलब पानी पर गए तो उसके बाद दूसरी जुताई भी कर रही है, और अपने किसान भैया जो है बीज खाद लेके जो है तैयार बैठे हैं कि जैसे ही जो है भाई बोनी लाग पानी अगर खेत में आ जाए तो उसके बाद अपन जो है तुरंत बोनी कर वो शुरू कर दें। और कछु भैया ऐसे हैं कि उन्हें जुताई कर दी है, अभी देख रहे कि पर पानी भर जाती के बाद फिर बीज लेवे जाएँ, फिर खाद लेवे जाएँ, उसके बाद फिर बोनी करें, तो सब तरह के भाई किसान भैया हैं। तो अब ऐसे किसान भैया से कहा कहेंगे, लेकिन अपने लाने चाहिए कि अपन जो है खेतन की जुताई तैयारी कर ली है, बीज खाद को बिल्कुल इकट्ठा
4: अपन बंगरू भैया जाके बारे में हमेशा भैया से बताते रहे हैं कि कैसे कि जैसे भी बोनी को टाइम आते तो तुरंत करना चाहिए बोनी का, और पहले से अगर तैयारी रखेंगे तो तुरंत कर भी पाएंगे। और कैसे क्या कहा होता है कि टाइम पे अपन ने किसानन को चूकना नहीं है, कैसे वासे उत्पादन पे असर पड़ा था।
5: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, तो जाके लाने अपने चाहिए कि अपन खेतन की बड़ी जुताई कर लें, बीज खाद लेकर रख लें, और बीज की जो अंकुरण परीक्षण क्षमता जांच कर देख लें, और बीजोपचार की दवाई जरूर रख लें। बिना बीजोपचार के अपने जो है काऊ भी बीज खेत में नहीं डालने हैं, नहीं तो काऊ ये कि अपना जो है बीज बेकार चलो जाओ। और एक बात और को ध्यान रखने हैं कि अपन जब बोनी करें तो बोनी कर समय अपने चाहिए कि अपन बोनी जो है सीडल की मदद से करें, ना तो छिटकवा विधि से करें, ना अपने फेंकने हैं, और अपने चाहिए कि अपन जो सीडल से करेंगे तो वहाँ में कहा है कि बीज जो है एक लिमिट में लगत है, एक है ना, और छिटकवा विधि में कहा है कि जितने घास में आ गए उतने फेंक गाओ, बाकी बाद बीज के कहीं दाने चार गिर गए, कहीं जो है कहीं दानों रह गाओ, तो ऐसा भी रहते तो अपने लाना कहीं घने हो गए, कहीं बेग रहे हो गए, तो जैसे जो है उत्पादन पे असर पड़ा, उत्पादन अपने लाना कम मिला थे, तो अपने लाना जो बात को भी ध्यान।
4: मंगलू भैया जब हमें एक बात और है कि जैसे अपन बात कर रहे थे कछु भैया ने जैसे अगर बीज नहीं लाए खाद नहीं लाए, जबकि कछु वजह जे भी होते हैं कई बार भी आर्थिक संकट से जूझते हैं, तो जा देखो जा स्थिति के लाने अपन जानते हैं, शासन भी जानते हैं, सरकार जे कर सोचत है कि अगर ऐसे कौन भैया आए हैं तो इनकी आर्थिक मदद करी जाए, जैसे नकदी के संकट से इनको नहीं जूझना पड़े, जय मारे ऐसी योजनाएँ चलाई जाते शासन के द्वारा जिसे भैया लाभ उठाएँ। तो ऐसी देखो जे जो किसान सम्मान निधि योजना है जो किसान भैया के लाने एक चीज समझ लो वरदान सिद्ध भई है।
5: बिल्कुल, कैसा है जई समय पे जो है उनके लाने पैसा काम में आओ, कैसा बीज खाद के लाने जुताई के लाने जई समय आप पैसा लगत है, तो जहाँ में जो है शासन द्वारा अपन देख रहे के 2,000 करके जो है तीन
4: किस्त के रूप में दे
5: किस्त के रूप में 6,000 रुपया
4: बिल्कुल
5: साल में देते हैं, है ना,
4: और वो ऐसे टाइम पे मिल जाते हैं कि जब भैया के लाने कछु पैसा की जरूरत होते है तो बीज खाद को इंतजाम हो जाते हैं। तो जैसे भाई लोग शासन द्वारा ऐसी योजनाएं जही मारे चलाई गई हैं जिससे अपने भैया के लाने कोनो परेशानी नहीं आए, और खेती बाड़ी भी इनकी अच्छे से चलत रहे, इनको अच्छा लाभ मिलत रहे, और खेती भी इनके लाने लाभ को धंधा बने।
5: तो मतलब यही है कि अपन जो है पूरे से तैयारी कर लें, पूरे तरह जैसे समय आए तुरंत अपन जो है बोनी कर दें। अब जिन भैया के पास जैसे घर को बीज है तो घर के बीज को छान ले फटक लें, एक सौ दानों ले लें, घुनो कटो फटो ऐसे दानों नहीं लेने हैं, वजनदार दानों अपन ले लें, तो बात कहा है कि अपने जो पता चल जाएगा बीज अपना अच्छा है, और तीन साल बाद तो अपने लाने कोई भी बीज हो अपन जो बदल देने हैं, है ना, तीन साल तक अपन बीज को उपयोग करें, बाकी बाद जो है अगलो बीज ना ले लें, तो जो बात को अपने लाना बिल्कुल ध्यान में रखा हुआ है, खरीफ की फसल की तैयारी करने हैं, बोनी करने हैं, तो अपना पैदावार जो है बिलास अच्छी होगी।
4: बिल्कुल भैया। और देखो आज है मंगलवार को दिन, तो मंगलवार के दिन हम भैया इनके लाने सुनवा होते हैं किसान वाणी गांव में किसानों के संग में स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। सो आज सोई हमारे भैया गए हते ग्राम बसंतपुरा विकास खंड बदरवास जिला शिवपुरी, और बीते करीब इनने भैया से बातचीत और करी रिकॉर्डिंग। सो चलो अपन बिनकी सबकी बातचीत सुनते हैं, और जहाँ मैं पाए असाइनी और प्रस्तुति सहयोग है पाए भैया श्री मोहन सिंह यादव को, और जी के प्रस्तुत करता है श्री विनोद कुमार त्रिपाठी।
5: तो भैया सुनाते हैं अपन जो कार्यक्रम।
6: भैया अपन आकाशवाणी के माध्यम से किसान भैया के लाने खेती किसानी संबंधी जानकारी। जी मैं आधुनिक कृषि यंत्रण के बारे में, उन्नत बीज और खाद के बारे में, बीज को बीज उपचार के लाने, आधुनिक तरीका से खेती संबंधी साग भाजी लगावे के संबंध में भी जानकारी, खेती किसानी से जुड़े सहायक धंधे जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और शिक्षा संबंधी जानकारी भैया के लाने सुनवात रहे थे। जी हां, सुन के अपाई किसान भैया आज तरीका से खेती कर रहे हैं, कम लागत में अच्छी पैदावार ले रहे हैं और मुनाफा भी कई गुना बढ़ रहा है। और समय समय पे अपन भी शिवपुरी जिले के गांव गांव में जाके अपने किसान भैया से सीधी बात कर रहे थे, उनकी उन्नत खेती करवे के बारे में, उन्नत पशुपालन के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में जाना था। और आकाशवाणी के माध्यम से शिवपुरी जिले के सभी गाँव के किसान भैया के लाना जो है सुनवाउत भी है, और ये बातचीत का सुन के अपने गाँव के जो किसान भैया भी जागरूक हो रहे हैं, उन्नत तरीका से खेती कर रहे हैं, उन्नत तरीका से पशुपालन कर रहे हैं, और यही हमारा उद्देश्य है कि अपने किसान भैया जो है आगे बढ़े और अच्छी खेती करें। आज अपन आए हैं शिवपुरी जिले के विकास खंड बदरबास के ग्राम बसंतपुरा में, जो बहुत ही अच्छा गाँव हमें लग रहा है। कैसे के जो जगह पे अपन बैठे हुए हैं, वो तो चारों तरफ खेतन की जुताई चल रही है, मेड़ पे फलदार कछु छायादार पेड़ लगे हैं, और किसान भैया के खेतन में खाद छिड़कने का काम चल रहा है, और पीछे जोन ट्रैक्टर से हकाई भी हो रही है। बगलाई में बनो है सामुदायिक भवन और आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्कूल सोई इतने है, जिससे कहे तो लग रहा है कि जो है अपो विकसित गांव है। और अपने पास से जो है कछु किसान भैया सोई आ गए हैं, सोई अपन किसान भैया से अपन बतिया अचानक देर से, पर इसे पहले अपन किसान भैया से करते हैं राम राम।
7: राम राम
6: भैया, अपन नाम का है
7: रमेश रघुवंशी बसंतपुरा।
6: रमेश जी अपन जो है खेती कर रहे हैं, अपने पास कितने जमीन है?
7: जमीन 40 बीघा के लगभग।
6: 40 बीघा जमीन अपने पास है, तो अपन जो है जा समय अपन देख रहे हैं कि खेतन में जुताई पड़ी है,
7: जहाँ से जो ही है कि अब थोड़ी थोड़ा जैसे पानी पड़ गया है तो वहाँ में लिया जम गए, तो बस जुताई कर रहे हैं, कूड़ा मर जाएगा, नमी बन गई, पानी बरसेगा, सब दोबारा आंकना नहीं पड़ेगा, पहले सूखे में भी जुताई कर दी।
6: जो खेती है उसमें अपन कौन कौन से फसल जावे लेवे को अपना विचार है?
7: सोयाबीन उर्दी दोनों फसल
6: के लाने हैं। बीज अपन कहाँ से लाते हैं, कैसे बीज लेते हैं?
7: बीज घर पे,
6: घर को बीज उपयोग करते हैं।
7: हाँ, घर को ही
6: करते हैं। जहाँ बीज की मात्रा अपन के देख लेते हैं
7: 20-22 किलो।
6: खाद कैसा कराते हैं?
7: 10 किलो भी।
6: तो अपन जो बोनी कराते हैं, वह बोनी को

0: तरीका कौन सा रहता है?
1: कौन ही कैसे मिलाओ इकट्ठो गान करो और सीरियल में डाल के बुरा एक ही पेटी ऐसा करें तो पहले सोयाबीन बो दो ऊपर से यूरिया और डीएपी उर्दी में वो ही करते हैं कूड़ा ही दवाई डाल दी
0: उर्दी में काऊ रोग
1: पीड़ा आता है पीला रोग पीड़ा भी आता है वो खेरा भी लगता है दवाई ला के डालते हैं कहीं रुक जाता है कहीं नहीं रुकता।
0: तो अपने पैदावार इनकी कैसी मिला था सोयाबीन की उर्दी की?
1: वो तो कम की साल हो जाता है कि अच्छा ही मिल जाता है। अब 4-6 साल से मंदी निकल रही है।
0: किसान भैया आपने जो है बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका नाम का है?
2: रामपाल रघुवंशी, बसंतपुरा गांव के रहने वाले हैं।
0: तो रघुवंशी जी आप तो जो है बिल्कुल नई उम्र के लग रहे हो और अपन देख रहे हैं जो है आपकी खेती बाड़ी भी अच्छी है, तो आप कितने साल से खेती कर रहे हो?
2: करीबन 1 साल हो गई
0: खेती करा। तो अपन जो है कौन कौन सी खेती अपन खेतन में लेते हैं? अपन
2: अभी सीजन में तो सोयाबीन और उड़दी की लेते हैं, चना की भी लेते हैं, गेहूं की भी लेते हैं, धना की भी लेते हैं, मसरा की, मसूर की, ये कई बात है मसरा में।
0: तो जस हमें अपनी कौन से मतलब फसल कर भी के तैयारी है खेतन में?
2: जस हमें सोयाबीन और उड़द।
0: सोयाबीन
2: उड़द
0: तो उड़द के ये तैयारी का किसान भैया बताओ आप कौन तरीका से करोगे? भाभी भाई किसान भैया सुनेंगे और गांव के तो भाभी आपकी वे विधि को देखें भाभी भाई तरीका से करेंगे जैसे उनके लाने भी अच्छी पैदावार होगी तो जाके लाने आप बताओ।
2: जी मैं साहब ऐसे क्या बढ़िया बो दो अपन बोने के बाद में
0: बीज अपन कौन से लिए थे?
2: बीज निगम से भी ले लेते हैं, बाजार को भी लेते हैं, घर को भी मिल जाए वो भी बो देते हैं अगर अधिक सही होना चाहिए।
0: बाकी अपन बीज की अंकुरण क्षमता देखते हैं कि नहीं देखते हैं?
2: नहीं उसकी क्षमता देखते हैं कि बीज कैसा है, उसके मिलावट का होता है कछु वैसा भी होता है वो नहीं बोना चाहिए अच्छा बीज। हाँ दवा को इस्तेमाल करते हैं कछु वो रुक जाते हैं थोड़ी
0: बहुत रुकते हैं कम, लेकिन जो पटावे वो तरीका जो आप बता रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा।
2: वो बहुत अच्छा लगा
0: है ना,
2: वो बहुत अच्छा है।
0: वादे का है कि वो कहीं की भी नहीं कंट्रोल हो जाए
2: बिल्कुल। वो तो पेदर चार एक आज 10 देखे कल 25 देखेंगे, परों के दिन 30 भी देख सकते हैं। तो बिना सब रोज पटाओ देखते 3-4 दिनों में वो फैलता है, तो एक दिन मेहनत करो जाके बाद में कुछ नहीं उसमें करके आ जाए सो कटा लो और कुछ कर नहीं है बामिल्ली वगैरह आए तो थोड़ी बहुत बाकी दवा डालो।
0: अच्छा सोयाबीन के बारे में आप क्या विचार रहे हो?
2: सोयाबीन बढ़िया है जैसे अब बढ़िया जुताई करो, जुताई करो कम से कम ताई करवे वो गहरी जुताई करो, कीड़ा मीड़ा जो अभी है सब मर मतलब कीड़ा मर जाए बाकी बाद में अपन वो तो दोरी मशीन से बोने चाहिए उसे
0: दो पेटी बारी से
2: कैरी से नहीं बिना खाद का है कि कछु दूर पड़ता है कछु बगल में तो वो अब कोई मतलब का नहीं रही क्योंकि देखभाल करते रहे हो इसमें वो ना इल्ली है इल्ली आते ज़्यादातर गड़ेरा बारी तो उसकी देखभाल करो।
0: तो किसान भैया देखो आपके पास जो है एक बढ़िया बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो उनको खेती कराते हैं, बढ़िया किसान हैं भैया, आप नाम बताओ?
3: मेरे पूरन सिंह।
0: तो पूरन सिंह जी आपकी उम्र कितनी हुई है?
3: मेरी ये 76 साल की।
0: बिलात समय से जो खेती कर रहे हैं और जी में जो है इन्हें खेती को बिलात अनुभव भी है, तो इनके अनुभव के बारे में अपन जो है इनसे पूछा थे कि दादा आप जब बताओ कि पुराने में कैसे खेती होती
3: थी? ज्वारी करत थी, गेहूं चना करत थी, वही फसलें करत थी।
0: तो पहले पैदावार कैसी?
3: पहले तो बहुत कम पैदावार है
0: और अब
3: पानी हो गए सब कहाँ, जुताई भी सही हो लगी टाइम से, ट्रैक्टर हो गए सब कहाँ तो पानी लगन लगी तो अच्छी पैदावार हो लगी।
0: ये अपन देख रहे हैं कि अब जो खरीफ का मौसम आ रहा है और खरीफ के मौसम में अपन देख रहे हैं कि जो अपनी जुताई चल रही है जहाँ में भैया जो है खाद भी डाल रहे हैं, तो जुताई और ये खाद अपन जो कौन सा डाल रहे हैं और जहाँ अपन कौन सी फसल की तैयारी अपन कर रहे हैं?
3: अपन सोयाबीन की तैयारी कर रहे हैं, उड़द भी करेंगे थोड़े थोड़े।
0: तो सोयाबीन की खेती के बारे में किसान भैया का नाम बताओ, आप कैसे करत हो?
3: हमने मांसी लाए थे धारण कैसे छपसीरी भी का हमने ये रो दो
0: की बार के
3: आपकी वो छह ही रहेंगे
0: और तैयारी अपन कैसे कराते हैं
3: जी? खरारे लग गई हमारी
0: और
3: पानी बरसा तो वो भी तैयारी कर देंगे खाद मिला के और वो देंगे, फिर उसके बाद हम दवाई लाएंगे कचरे की।
0: अच्छा
3: और फिर वहाँ के साथ इल्ली की भी दवाई डालती है जहाँ में ज्यादा लगता जाती है हमें वो फसल से,
0: फिर अपन देखभाल करते रहते
3: देखभाल करते रहते
0: जहाँ में कोई रोग बीमारी आता
3: है। हाँ रिल्ली बहुत लगती है इसमें, 3-3 बार दवाई डालनी पड़ती है
0: रिल्ली।
3: हाँ
0: कौन सी?
3: जी सोयाबीन की फरी काट देते
0: फरी खा जाता।
3: हाँ।
0: तो बाकी नियंत्रण के लिए अपन दवा को छिड़काव कर
3: दवा छिड़काव कर।
0: तो आप खेती तो अपन कर ही रहे, खेती के संगे संगे आप पशु पाला? तो
3: पशु तो एक आध दो रखे हैं
0: नहीं, जैसे अपन खेती कर रहे हैं खेती के संगे।
3: हाँ एक दो दो पशु पालन तो है।
0: उनकी देखभाल कैसे करा?
3: अरे होती परेशानी बना देते और खरमर ला के पशुपालन करे तो हमारे यहाँ एक ने करो तो वहाँ बहुत फायदा हुआ। तो
0: पशुपालन करना चाहिए?
3: हाँ करना चाहिए, वो घर बैठे की खेती है।
0: टीके लाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भैया देखो, अपने पास एक किसान भैया ऐसे हैं जो खेती करते हैं, और खेती के संग संग बहुत ही अच्छे तरीका से जो है पशुपालन करते हैं। अपन देख रहे हैं कि इनकी सार में जो है ये दशक भैंसा दिखा रही हैं, चार छह गईया हेंगी, बच्चियां भी हेंगी, और इन्हें सार इतनी अच्छी बना रखी है। सो किसान भैया देखो, नीचे से पक्की भी है, उजेरे के लाने लट्टू भी लग रहा है। अब इन्हीं से अपन जो जाना थे कि जब पशुपालन अपने किसान भैया कैसे कराते हैं, तो सबसे पहले किसान भैया अपना नाम बताओ।
4: हमारा नाम बुंदेल सिंह लोधी।
0: पशुपालन कितने समय से कर रहे हो?
4: करीब करीब 8 साल हो भाई।
0: 8 साल से अपन जो है पशुपालन कर रहे हैं। तो अपने पास जो नाग अपन देख रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था आपने जो है कैसे करी है और कैसे करने चाहिए किसान भैया कराने, जा बताओ।
4: व्यवस्था जी ये उसकी अपन रख रहे हैं, जैसे बांध रहे हैं सार है, उस हिसाब सफाई से रखो, और उसके नीचे वो खड़ंजा लगाओ, पीठ को खड़ंजा लगाओ, ऊपर जो है अब गर्मी में पंखा भी लगाओ, मच्छर के लिए भी पंखा बरसात में, और बढ़िया एक दो बार नहलाते हैं, इसके बाद बढ़िया सानी देते हैं, खार देते हैं, और अपन दरोरा बना लेते हैं। हम किसान हैं इसलिए ये चुनी वगैरह घर की बना लेते हैं, सोयाबीन है, चना है, ऐसे गेहूं है, मिला के उसे सानी में खिलाते हैं, और बढ़िया व्यवस्था करते हैं। गोबर होता है उसे खाद बनाते हैं, खाद अपन 2-4 ट्राली होगा हर साल उसे खेत में डालते हैं, उससे उत्पादन बढ़िया मिलता है अपन।
0: जैसे आप पशु पाल रहे, आप बता रहे थे सब खवा होते हैं दूध वाले पशु हैं, तो अपन यहाँ जो दूध पैदा होते हैं वो अपन क्या कर रहे थे उत्पादन जो दूध को होते हैं?
4: दूध को ये करते हैं, घर में 10-20 लोग हैं, कुछ खर्च में ले जाए, घर के में थोड़ा बहुत बचा तो आप उसमें भी ले लेते हैं और बाजार भेज देते हैं, और कछु घी बना लेते हैं मठा, वो घी से अपनों घर को खर्च चलाते हैं। ऐसी व्यवस्था बढ़िया चल रही है अपनी।
0: तो हम के मतलब जो है कि आप पशुपालन जो कर रहे हो बहुत ही अच्छे तरीका से कर रहे हो। अच्छा, दूध की पैदावार बढ़ावे के लाने, उत्पादन बढ़ावे के लाने अपन पशुपालन के लाने समय समय पर क्या खवा होते हैं?
4: समय समय पर जो है अभी तो पानी की जो पशु गाँव में ज्यादा फिरते हैं सो हरा चारा नहीं बो पाती है, और जे में अपन वो बुरसिन बोलेंगे कुंवर में, और बुरसिन हरो चारो खिलाएंगे और थोड़ी खर भी खिलाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, बढ़िया दूध मिलेगा अपन, मिलता है जो व्यवस्था है, और जो खाद है उससे भी लाभ मिल रहा है हमें।
0: बरसात को समय आ रहा है तो बरसात में काहे पशुओं में मिला तरह की बीमारी हो जाते हैं, तो उनको टीकाकरण जो पहले करा दिए
4: टीकाकरण
0: जी वो आप करवाओ तो टीका।
4: हाँ, अब जी जुलाई में होगा टीकाकरण, सब पशुओं को टीकाकरण होगा, इससे बीच में भी कछु आ जाती है बीमारी तो हम पास में बाजार है डॉक्टर है उसे बुला लेते हैं, फोन नंबर रखते हैं उनका, भी तुरंत आ जाते हैं, इलाज कराते हैं।
0: अच्छा, जैसे आप बता रहे कि जैसे गोबर की खाद जो हो जाते हैं 10-5 ट्रोली अपन खेत में डाल देते हैं, तो खेत में गोबर की खाद डालने को कब फायदा है? पहला
4: बासी साहब हमें बहुत फायदा है, बासी हमें जी खाद नहीं खरीदना पड़े बाजार वालों, बासी पैदावार अच्छी मिलती है जी, और लोगों से अच्छी दोगुनी पैदावार मिलती है, पैसा बचता है, और भी हम मूल ले लेते हैं हर साल एक आध दो दो बीघा 3 बीघा में हर साल भर देते हैं, वो खाद हम नहीं डालते जी, लाभ ऐसा।
0: अच्छा, एक बार अपन जैसे खेत में गोबर को खाद डाल दें तो बाद जो है क्या साल में अपन मानते हैं कि उसमें पैदावार अच्छी मिलत रहेगी?
4: 3 साल तो बढ़िया मिलती है साहब।
0: 3 साल में वहाँ में अपन कोई दूसरा रासायनिक खाद नहीं डालते?
4: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डालते हैं हम तो नहीं डालते हैं साहब, बढ़िया पैदावार मिलती है उसी से।
0: अच्छा, जो पैदावार होते हैं बाकी जो अपन कहते हैं रासायनिक खाद और जैविक खाद से अपन गोबर की खाद से कराते हैं, इनके भाव में भी कुछ अंतर रहते हैं?
4: हाँ, भाव में कोई अंतर नहीं रे, भाव तो अच्छा और बढ़िया चमक आती है देसी खाद से।
0: तो अपन ने जो है तेरी जगह पहले कछुका करो तो खेती में
4: गेहूँ करे थे सब,
0: गेहूँ करे अपन। हाँ, कौन से
4: जे करे थे? सुजाता है, छोटी सुजाता है एक, वो कम बढ़ती है, और वो एक बड़ी सुजाता है, वो ज्यादा बढ़ जाती है तो वो पानी के समय हवा चल जाती है तो वो गिर जाती है, पहले वो भी करी हमने, अब वो छोटी करने लगे, अब की साल वो 9 बीघा में बोई थी साहब।
0: तो जामे अपन बीज कितने लाओ अपन ने?
4: 9 बीघा में आप लगा लो ऐसे 30-35 किलो के 32 किलो के हिसाब से बोई थी हमने।
0: और जामे 9 बीघा में पैदावार कितनी भाई?
4: बामे अपनी भाई 90 क्विंटल निकली।
0: और जामे लागत कितने का हुई है?
4: और लागत आप लगा लो 50-60 हजार की लागत मान
0: पूरी 9 बीघा पे। मतलब जो है कि जैसे अपन मिनी सुजाता करत है तो वहाँ में पहलाने में अच्छा फायदा होता है, तो जा तो बहुत ही अच्छी बात है।
4: वो मिल गए सर, और ये भूसा होगा भैंसा नहीं, वो भी लाभ होगा, भूसा होगा।
0: मुझे बताओ कि पशुपालन करवे से खेती के संग अपन पशुपालन करते हैं वहाँ का लाभ?
4: वहाँ को लाभ यही होते है, एक तो खाद मिलती है हमें और खाने को दूध घी मिलता है, थोड़ा बहुत पैसा आता है बाजार से बेच देते हैं तो खर्च भी चलता है।
0: कितने एक अच्छी बात कही आपने कि दो किसान भैया के लाने खेती के संग

0: ये काम करना
1: जरूरी है साहब, खेती के साथ दो ज्यादा नहीं तो दो पशु दो भैंस है तो जरूरी है,
0: करना चाहिए। तो जैसे गाय पशु रखने में कोई अलग से खर्चा होता है?
1: कछु अलग से नहीं है साहब, भाई मैं से हो रहा हूँ साहब
0: खेती किसानी में।
1: हाँ, बस
0: तो किसान भैया देखो, भाई किसान भैया ने देखो देख अच्छी बात बताई कि अपन ने लाना जो है खेती के संग जो है पशु जरूर पालना चाहिए। कह सके खेती में से ही इतने खर्चा, मतलब पशु के लाना जो खवा पवा दू सबने करे आते, और बस इतने आमदनी पे लाना मिल जाते कि भाई मोड़ा मोड़ी घी दूध खा लेते हैं, उसके बाद जो है नकद भी मिल जाता है जिससे घर को खर्चा चल जाते। तो ये किसान भैया जरूर करें। तो लोधी जी आपने भाई किसान भैया के लाने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, ये कहलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भैया देखो भाई सर, किसान भैया जो है अलग अलग भाई अनुभव बता रहे हैं और अपन इनसे सीधी बात भी कर रहे हैं। सो देखो आप अपने बीच में हैं जो किसान भैया जो अपने लाने जो है इनने धनिया की खेती बहुत ही अच्छी करी और बहुत ही अच्छी पैदावार इनके लाने मिली। तो अपन जो किसान भैया से बात कर रहे थे, तो किसान भैया देखो आप अपना नाम बताओ।
2: मैं कैलाश श्री रघुवंशी हूँ।
0: तो कैलाश जी आपकी कितनी जमीन है?
2: मेरी 35-40 बीघा जमीन
0: है। 35-40 बीघा जमीन है। अपन काय की खेती
2: धनिया करते हैं? धनिया की अच्छी करते हैं हम, धनिया चलती है,
0: धनिया की खेती। अच्छा आप धनिया की खेती जैसे आपने अगर करी तो आप जब बताओ कि मामे जैसे 35 बीघा जमीन 40 बीघा जमीन है आपकी, 40 बीघा में आप किराना कितनी पैदावार मिली?
2: नहीं सबरी में नहीं करी थी, मतलब
0: तो क्या बीघा में जैसे
2: मैंने 20 बीघा में बोई।
0: अच्छा आपने 20 बीघा में धनिया की बोई, तो धनिया में आपने पैदावार आपके किराना कितनी मिली?
2: पैदावार जैसे मान लो अब टोटल तो नहीं लगा, मतलब 5,000 से 7,000 तक, 10,000 तक जैसी मतलब अपनी धनिया निकली भाई हिसाब से।
0: एक बीघा में कितने क्विंटल निकली भाई धना?
2: एक बीघा में निकल आई अपनी मतलब जो है 5 क्विंटल से लगा के मतलब जो है 6-7-6-5
0: मतलब पहलाना 100 क्विंटल 100 क्विंटल भाई धनिया की पैदावार भाई। और बापन ने बेची का भाव से?
2: बेची 5,000 से और जो है 7 भी बेची। कछु तो कछु खराब हो गई थी भाई हिसाब से, और कछु अच्छी निकली मतलब जो है 10-9 10-9 10 बेच गई।
0: तो अपन जमान के चलो के अपन ने 5 लाख की कम से कम पैदावार वहाँ में भाई है ना। अब जब बताओगे एक बीघा में जाके भाई लागत कितनी लगी हुई है?
2: एक बीघा में लग गई अपनी सबरी टोटल शुरू से लगा के जो है 5,000 तक मतलब जो है अपनी
0: एक बीघा है ना, तो 50,000 रुपया आपकी जो है लगभग लागत लगी और आपके लाने 4.5 लाख रुपया फायदा भाव। तो आप जब बताओ जैसे अब धना की खेती आपने करी, तो जामे जो किसान भैया जो कर वो चाहते हैं धना की खेती, तो उनके लाने आप जो बताओगे आपने शुरू से और आखिरी तक कैसे अपनी धना की तैयारी करी, कैसे देखभाल करी?
2: देखभाल तो मतलब जो है जैसे बोई जाती है अपने, तो वहाँ में खाद भी मिलाओ जाते है, सारी व्यवस्थाएं करने पड़ते हैं। बाकी बाद में उगया और फिर वहाँ पाउडर वाउडर वगैरह जी कई चीजें डाली जाते हैं, कीड़ा मीरा जी लग जाते हैं, तो वहाँ में सारी व्यवस्था बावी करने पड़ते हैं। फिर बड़ा होगा फिर वहाँ में जो है पानी भी देने पड़ते हैं, पानी देने के बाद में भी मतलब जो है फिर वहाँ में एक घोल की दवाई लेके और बावी छिड़काई करी वहाँ में। अब बाकी बाद में फिर जो है बड़ा होगा तो फल लग गए, तो फल छोटे छोटे हैं तो फिर वहाँ में और दवाई डालने पड़ते हैं। बाकी दवाई से जो है अपने दवाई में लेके और बाद छिड़काव करो वहाँ में, छिड़काव करके धना मतलब जो है अपने बराबर के दाने होते हैं। और फिर बाकी बाद में जैसे जो ज्यादा ठंड मंड पड़ी तो जो सूजा चलता है ना वो, तो वहाँ में जो है फिर दवाई भी डालना पड़ता है, दवाई भी उपयोग करना पड़ता है वहाँ में, ऐसी बात है जो है। और फिर मतलब जो है बाद में भी जैसे कोई लोग ने पीछे बो पाई टाइम के ऊपर, तो वहाँ में फिर धोरा लग जाता है, धोरा लगने के बाद में जो है धोरा की भी दवाई डालना पड़ता है वहाँ में, बाई उपयोग करना पड़ता है। फिर अपन हली जो है धनिया बनाते हैं वहाँ में भी अलग अलग हिसाब बनाना पड़ता है, और जो कोई व्यक्ति नहीं बना पाए तो वो पीली वैसी हो जाती है लाल वगैरह, तो वह कम बेचती है, और जो जो है ज़्यादा बेचती है जो हिसाब से बन जाती है वो अच्छी कीमत में दे जाती है भाई, अपने लाभ में अच्छा मिलता है। मेहनत करना पड़ता है छोड़ा जहाँ में जो पाउडर वगैरह दवाई मवाई वाली।
0: अच्छा जहाँ में आपने जैसे धनिया की पैदावार करी, तो जिस सीख अपन ने कहाँ से लेगी अपन ने धनिया की पैदावार करनी है?
2: कोई भी कर्मचारी आए थे उनसे चर्चा भाई हमारी, तो बोले कि जी धना की पैदावार करो, धना वो ऐसे ऐसे मतलब जो है धनिया बो के और आपकी इतनी इतनी लागत मिलेगी। तो मैंने पहले एक बार जो है बीघा में बो के वहाँ को उपयोग करो, तो वहाँ में हमें जो है बसाल तो कहों की जानकारी नहीं थी, तो वहाँ में 15-20 हजार रुपये की हमें
0: आमदनी
2: मिल गई भाई हिसाब से। अगले साल हमने और भी बो गई, ऐसे धीरे धीरे जो है हमने मतलब वहाँ को उपयोग करो, तो आज की दिन मतलब जो है वहाँ से अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं।
0: तो आप धना की खेती विशेष करके?
2: हाँ धना की खेती हम करते हैं, और आप भी और कोई भी सुन रहे हो भाई तो आप भी यही हिसाब से जो है करना चाहिए और करो आप।
0: तो भाई किसान भैया इनके लाने आप भी जाओ तो बताओ कि बीज अपन कहाँ से, जैसे अगर कोई किसान भैया धना की खेती कर वो चाहता है तो बाकी लाने बीज कहाँ से ले वो?
2: अरे बीज तो ब्लॉक से भी लेना चाहिए, वहाँ भी मिलता है, और किसान भाइयों से लें तो वहाँ भी मिल जाता है। लेकिन वो किसान भाइयों को का है कि कोई का पानी का गिरा, कोई का फपड़ गया, मतलब मान लो इकट्ठा राश लगा दी धर दी भाई, और वो उपयोग में अपन अच्छा मिलता है। वैसे जो है अपन चाहे कैसे भी खेती

0: निगम ब्लॉक वाली बात जो है एक ही बात चलती है, हम तो मतलब ऐसे समझते हैं कि बात एक ही चलती है, तो ये निगम से ले लो या ब्लॉक से ले लो, कहीं से भी ले लो, बात बराबर चलती है।
1: धनिया की खेती करे वाले भैया है उनके रहने आप विशेष सावधानी या मैं कब बताओगे कि विशेष सावधानी कारक है जिससे उनको नुकसान ना हो?
0: दवाई लेके उसका उपयोग करा जाए, अगर अपन उपयोग नहीं करेंगे बढ़ापन भी नहीं देती है, पेड़ पौधा बढ़ भी नहीं सकता है, फल लगे वहां में तो बेबी बराबर नहीं चलेंगे, बिन में भी छोटा बड़ा हो जाता है, अगर अपन ने उपयोग नहीं किया, वैसे ही अपन ने खेत में बो दई फिर देखने नहीं गए भाई कि चलो वो तो निकलेगा सो निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी देखभाल भी करना पड़ेगा, जब जाके अपन जो है लाभ मिलता है उसका।
1: सो किसान भैया देखो इन रघुवंशी जी ने कि अच्छी बात है पहला ने बताई कि अपने लाना जो है सबसे अच्छी बात तो जा है कि अपनी फसल की अपने लाना देखभाल जरूर करना चाहिए, और देखभाल अगर अपन नहीं करेंगे तो पैदावार पहलाना जो है बहुत ही कम मिलेगी, और बीज पहलाना जो है बीज निगम से या ब्लॉक से लेना चाहिए, और समय समय पर दवा को छिड़काव करना चाहिए। तो जब सब लेकर जो है आप खेती करोगे तो जैसे इनके लाने जो है 50,000 रुपया की लागत पे 5,00,000 रुपया की पैदावार भाई, तो 4,50,000 को इनके लाने फायदा भाव। किसान भैया अगर अपन जी तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित है किसान भैया देखो अपन जो है अच्छी उन्नति तरक्की कर सकते हैं। रघुवंशी जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी अपने किसान भैया इनके लाने दी, ये कहलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भैया देखो अपन ने सभी किसान भैया से जानकारी ली, देखो काऊ ने धनिया के बारे में बताओ, काऊ ने पशुपालन के बारे में बताओ, और कछु भैया ने जो है अपने जो है खेती कैसे कराते हैं उनके अनुभव के बारे में बताओ, और अब हो अपनी चलवे की बेरा। तो चलवे से पहले अपन सभी किसान भैया से कहते हैं राम राम। किसान भैया अपन सुन रहे थे किसान वाणी गाँव में किसान के साथ क्रम के अंतर्गत ग्राम बसंतपुरा विकासखंड बदरवास जिला शिवपुरी की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित जी कार्यक्रम जी में असायन एवं प्रस्तुति सहयोग अतो मोहन सिंह यादव और प्रस्तुतकर्ता थे श्री विनोद कुमार त्रिपाठी। वो भैया देखो अपन देख रहे हैं कि इस समय जो है बरसात का मौसम आ रहा है, भैया खेती तो करते ही हैं, खेती में अपने समय को बड़ा ध्यान रखने हैं, और खेती के संग संग पर बिलात किसान भैया पाल रहे हैं पशु, और वे पशु ऐसे पाला थे कि अब देखो जैसे दुधारू पशु, अब इसमें कहा है कि जैसे मान के चलो का रोग बीमारी अगर लग जाए तो उसमें कहा है कि अपन देख रहे हैं कि दूध बंद हो जाते, उत्पादन कम हो जाओ, पैसा धीरा खराब होते हैं, पशु कमज़ोर हो जाते, तो अपने चाहिए कि जो बरसात के पहले पशुओं में कहा है कि जैसे कछु बीमारी बरसात में हो बारी
2: अपने लंगड़ी बुखार है
1: तो बरसात में होते हैं सबके जो है टीका बरसात के पहले माना जा समय में लग जाते हैं, तो अपने किसान भैया इनके लाने चाहिए कि अपन जो है इनको सबको टीकाकरण करा लें, और टीकाकरण करावे से जो है कि अपने जो है पशु पूरी बरसात में जो हुए वाले रोग हैं उनसे जो है सुरक्षित रहेगा, अपने दूध के उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छी आमदनी पर होत रहेगी, अपन परेशान नहीं होंगे, पैसा ढीला बचेगा, तो जो सब काम पर किसान भैया इनके लाने अपने लाने करने हैं है ना। और जामे एक बात को और ध्यान रखने कि मुझे बरसात शुरू हो रही है तो अपने लाने चाहिए कि उनके रहवे की व्यवस्था अभी तक तो ठीक है थी कि खुली है थी चारों तरफ से कोई बात नहीं, हवा भी आर लग रही है, लेकिन अब कहा है कि देखो बरसात शुरू हो रही है तो अपने चाहिए कि उनकी अच्छे रहवे की सार जो है ऐसी हो कि जी में जो है पानी बिल्कुल अंदर ना जाए बारिश को, और इस समय में उनमें उजेरे की व्यवस्था अपन ने ज़रूर करनी है कि बरसात में जो है कीड़े कांटे जो रहते हैं ना वे पशु के भीतर सार में ना जाए, तो उजेरो बना रहे हो तो इनसे जो है पशु के लाने हुए कीड़े कांटे देखेंगे जिनसे बचाव हो सकते हैं, और पशुअन की जो है सार की साफ सफाई अपने समय समय पर करते रहें।
2: बिल्कुल मंगरू भैया जी के संगे हो गई है चलवे की बेरा, तो लेते मैया से विदा सभी भैया बहनन काजे चंदा बहन और
1: मंगरू भैया की
2: राम राम, राम, राम जय जवान जय किसान।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे मुंबई से, जहां से आप सुन पाएंगे राष्ट्रीय विविध भारती का प्रसारण।
2: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
3: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
4: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौन रही है?
3: अरे बिजली बिजली कहाँ कौन थी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना की बहुत मजा आया।
4: तू इतना ही जान कर रुक जा,
3: नहीं तो
4: नहीं तो
3: नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
4: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी।
3: बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, फिर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता।
4: हाँ मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
3: राजा? कौन राजा?
4: है एक राजा। हाय काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
3: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
4: लड़का कैसा लड़का, जैसा मेरा राजा है।
3: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
4: अपने राजा के। ओ मंजू हाउ ही लव्स मी।
3: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहां से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोटा है, किसका पोता है?
4: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
3: ओहो, उसके खानदान का भी कुछ पता है?
4: अरे मंजू जी जी, उसका खानदान पानदान पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
3: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
4: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है।
3: दीपक? कौन दीपक?
4: हाँ वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू, वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है बस।
3: सुन कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
4: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
3: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हसोड़ सा था।
4: अब मैंने गोरा बोरा लंबा उम्बा हसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता।
3: ओहो, तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
4: थी? नहीं आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ, हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
3: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है, आता है तीज त्योहार पर।
4: अच्छा मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय।
3: कर दिया।
5: भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी हाँ। वो आपकी बहन है ना
3: हाँ।
5: उससे मिलना चाहता हूँ।
3: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
5: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
3: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
5: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
3: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
5: वो मेरा नाम जानती है?
3: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
5: नहीं मतलब हाँ मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ, दरअसल मंजू भाभी बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है, और फिर भाभी अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है।

0: पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे तो तुझे भाभी की याद आई। चल कुछ कहेगा भी?
0: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
0: कहूं? कह तू भाभी। भाभी असल में बात ये है भाभी, भाभी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। लो कह दिया
1: अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
0: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहेंगे कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील राजा ने कहां से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहेंगी, छोड़ उसका ख्याल।
0: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतनी कोमल गंभीर था, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने
1: की। अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, आप शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
0: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
0: ओ भाभी शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो प्लीज। भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, मुझे ख्याल आया।
0: क्या?
1: मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुनाने।
0: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
0: अच्छा
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आ। अच्छा सुन इधर आ। उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई भड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
0: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है। मैं तो छुपे जाने।
0: तुम छुप जाओ भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक।
0: जी जानता हूँ। जी जी, मतलब ये जानता तो नहीं था पर भाभी अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है, पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है, सुना दूं?

0: तोता।
1: वाह वाह,
0: पसंद आया?
1: क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया? मेरे शेर पसंद है बस मैं

0: नहीं पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते हैं।
0: शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साहे के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे बोल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज, शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई लव यू।
1: लेकिन क्यों
0: क्यों क्यों क्या राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं
0: तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊँ तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
0: कमरा खुला है लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अच्छा। अब वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
0: ये बात है तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, माँ तो बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
1: जाइए।
0: ओह माय गॉड, ये राजा इनका महबूब। सच में शील जी ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे भाई।
1: राजा राजा बी क्वाइट, चुप हो जा मेरे राजा। हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
0: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना?
1: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करते?
0: कभी नहीं कभी नहीं, तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
2: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने, संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है

कार्यक्रम में आइए सुनिए अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है ए

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: प्रशांत बारला, संदीप तिर्की और वी मणिमारन शामिल है। मिडफील्ड की जिम्मेदारी अद्रोहित एक्का, हरपाल, जीत पाल, मुकेश टोपो, मन्नू मलिक और ऋतिक लाकरा संभालेंगे। फॉरवर्ड लाइन में अजीत यादव, रवदीप सिंह, अर्जुन हरगुड़े, आर्यन जेस, लवनूर सिंह, कोनैन और गुरुसेवक सिंह शामिल है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 और 8 जुलाई को ऑस्ट्रिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 10 जुलाई को मेजबान बेल्जियम, 13 जुलाई को जर्मनी, 14 जुलाई को फिर से बेल्जियम और 17 जुलाई को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलकर दौरे का समापन करेगी। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात शतरंज पर। क्रोएशिया के जागरेब में कल से रैपिड एंड ब्लिट शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। गुकेश और प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे। ये प्रतियोगिता ग्रैंड शतरंज टूर का हिस्सा है, जो शीर्ष खिलाड़ियों को एक साथ लाने का सबसे बड़ा मंच है। ग्रैंड शतरंज टूर के अंतर्गत इस साल की ये तीसरी प्रतियोगिता होगी और इसके बाद 3 और प्रतियोगिताएं होनी है। इस प्रतियोगिता में रैपिड शतरंज के 9 दौर जबकि ब्लिट शतरंज के 18 दौर खेले जाएंगे। रैपिड में हर जीत के लिए 2 अंक और ड्रॉ के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि ब्लिट्स में जीत के लिए 1 अंक और ड्रॉ के लिए आधा अंक दिया जाएगा। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुल सत्तारोव, सर्बिया के इवान सारिक और रोमानिया के डीएक बोगदान डैनियल भी प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेंगे। और अब बात बैडमिंटन पर। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने आज अगले 2 विश्व के विश्व टूर कैलेंडर की घोषणा कर दी है। इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट फरवरी 2027 और जनवरी 2028 में खेला जाएगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 27 जुलाई से 1 अगस्त 2027 के बीच लखनऊ में होगा, वहीं 2028 में 25 से 30 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन

0: की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने

0: कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई ईओसीआई व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
6: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं।

करनी होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका

0: ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा है शवान रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की। फिल्म का नाम है हम साया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में। जो

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीरजी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

0: करी हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें देके जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं

ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये

उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में,
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कांग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती है।

0: आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।
1: दिल तो

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो वे एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलती हुई रात से गुफ्तगु, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

तेरे घर के सामने। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी की रचना है और संगीत SG बर्मन का, खूबसूरत आवाज मोहम्मद रफी की।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं जुर्म फिल्म का गीत। कुमार सानू और साधा सरगम की आवाज है, इंदिवर के बोल हैं और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म जुर्म का ये खूबसूरत गीत, जिसे लिखा था इंदिवर ने और संगीत दिया था राजेश राशन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए

0: एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and

तीन दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। दो दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ति और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली है और दक्षिण